दोस्तों, आजादी सिर्फ बंधनों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि आजादी वो एहसास है जब दिल खुलकर मुस्कुराए, जब सपनों को पंख मिल जाए और इंसान बिना डर के अपनी दुनिया जी सके। कभी कभी जिंदगी हमें इतने बंधनों में बांध देती है ना कि हम अपने ही मन की उड़ान भूल जाते हैं, लेकिन जब दिल से डर निकल जाए ना तो हर आसमान अपना लगता है और हर रास्ता आसान लगता है।

जानते हैं दोस्तों, कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है कि उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वो तलाश किसकी कर रहा है। कोई चेहरा, कोई अपना, कोई सपना, या फिर वो सुकून जो कहीं खो गया है। जिंदगी के भीड़ में इंसान बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन दिल का खालीपन फिर भी बना रहता है। तभी हवाओं से, फिजाओं से, रास्तों से एक ही सवाल निकलता है, आखिर ये मन किसे ढूंढ रहा है?

दोस्तों, हवा जब मस्ती में झूमती है ना, तो सिर्फ पेड़ों की डालियां ही नहीं डोलती, दिल भी कहीं भीतर से थिरक उठता है, जैसे कोई पुरानी याद पायल पहनकर लौट आई हो, जैसे बचपन की गलियां फिर से पुकार रही हो। ये मस्त पवन अपने साथ न जाने कितने एहसास ले आती है, कहीं प्रेम की खुशबू, कहीं मिलन की आहट, तो कहीं जिंदगी को खुलकर जी लेने का पैगाम।

0: शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है।

0: वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister Amit Shah yesterday. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in the favour of Suvendu Adhikari. Following his election as the BJP Legislature Party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R.N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has the majority. Meanwhile, the IUML headed by Professor Khader Mohideen has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dhinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannagudi, to make AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy as the new Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jayashankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jayashankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: 101.9, where rainbow adds color to your life. And this is your favorite segment. Namaste, hello, adab, aur kaise hain aap? Haan ji, kya haal chaal hai? आप सबका सुबह उठ के रिलैक्स होके एफएम रेनबो ट्यून इन कर लिया है और आकाशवाणी हैदराबाद के सबसे रंगीन गाने और बातों के शो में आ गए हैं। मैं हूं आपकी आरजे जागृति और ये है अपने दिल का स्टेशन एफएम रेनबो 101.9। एंड गेस व्हाट, आई एम नॉट अलोन इन द स्टूडियो टुडे। टू मेक दिस सैटरडे मॉर्निंग इवन मोर स्पेशल एंड फन, वी हैव समवन जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो टुडे। नाम नहीं बताऊंगी, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। हेलो आरजे।
1: हेलो जागृति, दिस इज प्रिया बांधवी एंड वी आर बैक टुगेदर।
0: यस अगेन टू टेक यू ऑन अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल जर्नी। सो हाउ आर यू प्रिया टुडे?
1: आई एम डूइंग वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड हाउ अबाउट यू, हाउ इज द जोश?
0: यस हाय सर, एंड लिटरली आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी टू हैव यू हियर। एंड आज है सैटरडे 9th May 2026, और बिलीव मी ये दिन काफ़ी खास है। वेदर का तो कोई भरोसा नहीं, कभी गर्मी कभी ठंडी, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं किसी की माया। बट एक चीज़ गारंटेड है, अगले 4 घंटे आपके साथ मैं हूँ और ये शो है, स्टूडियो क्लॉक है, प्रिया हैं, और आपका रंगीन होने वाला ये है ये 10 से 2 का शो। नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट, धमाकेदार बातें, जबरदस्त गाने और ढेर सारी मस्ती। तो डियर लिसनर्स, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि रेनबो एक्सप्रेस अब चलने वाली है अपने म्यूजिकल सफर पे। टेक इट अवे।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे थे तितली फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026। तो ये एक स्पेशल डे होता है द वर्ल्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स एंड व्हाई प्रोटेक्टिंग देम मैटर्स। हर साल मिलियंस ऑफ बर्ड्स ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री कॉन्टिनेंट्स एंड इन सर्च ऑफ फूड, बेटर वेदर एंड सेफ नेस्टिंग प्लेसेस। और पता है द क्रेजियस्ट पार्ट, बिना मैप्स के, बिना GPS के, बिना टेक्नोलॉजी के इतना दूर ट्रैवल करके आते हैं हमारे पास, और हमारे देश के बर्ड्स जाते हैं कहीं और। सम बर्ड्स ट्रैवल मोर देन 15,000 miles ड्यूरिंग माइग्रेशन। वेल, कुछ अनबिलीवेबल बात बताओ क्या जागृति?
1: जी हाँ, बताइए। और मेरा एक प्रश्न भी है जो मैं आगे आपसे पूछूंगी।
0: हाँ हाँ, तो ये अनबिलीवेबल बात ये है कि साइंटिस्ट बोलते हैं बर्ड्स नेविगेट यूजिंग द स्टार्स, सनलाइट एंड इवन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसका मतलब बर्ड्स बेसिकली नेचुरल कंपास कैरी करते हैं उनके साथ हर वक्त। एंड द हाईएस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड, वेल दैट इज द बार हेडेड गूस। इट फ्लाइज ओवर द हिमालयाज एट द हाइट ऑफ द क्लोज टू एयरप्लेन्स।
1: याद आया, ये बर्ड्स तो हमसे भी ज्यादा नॉलेज वाले हैं। मतलब इनके लिए कोई GPS नहीं चाहिए, इनको बस मैग्नीट्यूड, स्टार्स, सन, इनकी ही हेल्प से ये लोग पूरा दुनिया देखते हैं। इनके लिए कोई फोन में नेट की जरूरत नहीं, अरे GPS नहीं है मैं यहाँ कैसे जा पाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नेचर को फॉलो करते हैं। नेचर को फॉलो करते से याद आया, जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा कहते थे कि अगर सनलाइट सीधा आपके सर पे आ रहा है तो मतलब दोपहर हो गई है, अगर सनलाइट से आपकी परछाई बड़ी दिख रही है मतलब शाम हो गई है, अगर सनलाइट से आपकी परछाई छोटी दिख रही है तो मतलब 12 बजे से पहले का समय है। वो जो पहले वो लोग टेक्नोलॉजी बिना रहे जिस तरह से हमने ज्ञान देते थे और उससे उपयोग में लाते थे, अच्छा ही था, कुछ अमेजिंग था। मेरे एक प्रश्न है जो मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगी प्रिया।
0: हाँ, पूछो।
1: ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं अपने छोटे छोटे पंखों से इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे उड़ते हैं?
0: वेल, मैंने तो बहुत रिसर्च किया है, उसका आंसर भी बताऊंगी, बट इस गाने के बाद। वेट कर लोगी?
1: जी जी बिल्कुल, प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे बड़ा वो कठिन समय होता है, लेकिन कोई ना, हम वेट कर लेंगे।

0: वेल जागृति, आप पूछ रही थी कि ये टाइनी बॉडीज ऑफ दीज बर्ड्स इतने मैसिव जर्नीज कैसे कर लेते हैं।
1: हाँ, यही प्रश्न था मेरा कि इतने छोटे छोटे क्रिएचर्स, इतने ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, इतने कोमल क्रिएचर्स कैसे अपने छोटे छोटे पंखों से, छोटे छोटे पैरों से इतनी बड़ी दुनिया घूमते हैं।
0: वेल द आंसर इज बिफोर द माइग्रेशन वो लोग बहुत खाते। समझ आया कुछ?
1: हाँ
0: तो साइंस में बोलूं तो इसको हाइपरफेजिया कहते। इतना खाने के बाद उनका बॉडी स्टोर फैट कर लेता है, तो बॉडी दिस फैट इज देयर फ्यूल टू फ्लाई हायर।
1: ओके
0: सम स्पीशीज लाइक द बार टेल्ड गॉडवेड ऑलमोस्ट डबल देयर बॉडी वेट बिफोर माइग्रेशन। दैट मीन्स दैट हेल्प्स देयर बॉडी टू फ्यूल एंड लाइक फ्लाई फारर।
1: ओके, तो आप ये कह रही हैं कि जो वो इतनी ऊंचाइयों को उड़ती हैं, इतने सारे देश, इतने सारे जगह को जाती हैं, वो बिकॉज क्योंकि उनके पास एनर्जीज होती हैं, क्योंकि उनके पास फ्यूल होता है। आपको समझ आ रहा है ना कि हमें अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं मिस करना चाहिए। आई होप आपने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है।
0: वेल, इसके अलावा भी देयर मसल्स ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर दैट हेल्प्स

0: flying thousands of kilometers without a stop. Honestly, nature ka engineering bahut hi kamaal hai. Kya bolti ho?
1: Thousands of miles, मैं सुन के मुझे चक्कर आ रहा है, कैसे इसने छोटे छोटे पंखों से इतनी बड़ी बड़ी उड़ान और ऊंचाइयां तक वो पहुंचती हैं। लेकिन एक चीज तो मुझे समझ आ गया कि वो खाना अच्छे से खाती हैं।
0: सो फ्यूल इज इम्पॉर्टेंट। वेल, आप अभी अपन तेलंगाना स्टेट के माइग्रेटरी बर्ड्स और लेक्स के बारे में बात कर ले।
1: थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से गाने के बाद, ऑब्वियसली यस। सो उन छोटे छोटे पंख अपनी अपनी ही छोटे छोटे पैरों से कितने बड़े बड़े आसमानी मैदान फतेह करते हैं, और उसी फतेह के साथ हम सुनेंगे एक गाना, कर हर मैदान फतेह, जो गाया है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल मैम ने। टेक इट अवे।

0: लिसनर्स, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026, और इस साल का थीम है, बताओगी जागृति?
1: हम अपने लिसनर्स को भी बता देते हैं।
0: एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। सो हर साल लगभग नवंबर मार्च के मंथ में अपने स्टेट के वाटर बॉडीज के पास इन बर्ड्स के लिए घर होता है, घर बसा लेते हैं, कहीं दूर से आते हैं, एंड ये अपने टेम्परेरी होम होता है अपने माइग्रेटरी बर्ड्स को, थैंक्स टू द रिस्टोर्ड वाटर बॉडीज थ्रू द प्रोजेक्ट्स लाइक मिशन काकतिया, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। बर्ड लवर्स अक्रॉस द तेलंगाना स्पॉट दीज अमेजिंग स्पीशीज लाइक बार हेडेड गीज, ग्रेटर फ्लेमिंगोस, रेड क्रेस्टेड पॉडचर्ड्स, यूरेशियन टील्स, नॉर्दर्न शावलेस, इतने सारे बर्ड्स के नाम हैं जो अपने समझ के भी बाहर है। और इतने छोटे छोटे पक्षियों का हॉटस्पॉट होता है अमीनपुर लेक, किश्ता रेड्डी लेक, उस्मान सागर, अनंतगिरी हिल्स, कवल टाइगर रिजर्व, दुब्बालम्मा टैंक। बर्ड बिकम द पैराडाइज ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन सीजन। सो फन फैक्ट बताऊं क्या कुछ?
1: जी बिल्कुल।
0: द बार हेडेड गूस कैन फ्लाई ओवर द हिमालयास एट हाइट्स वेयर ऑक्सीजन लेवल्स आर एक्सट्रीमली लो। बेसिकली अपन जो ह्यूमंस भी नहीं कर पाते वो इतने छोटे से पक्षी कर लेते हैं।
1: इज इट रियली? आई रिमेम्बर लाइक कितने लोगों का ये विश होता है कि हिमालय पे जाना, हिमालय के ऊपर जाना, और ये छोटे छोटे पक्षी, रंगीन पंखों वाले पक्षी, कितनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ के पार कर लेते हैं। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारी प्रिया बता रही हैं कि ये जो पक्षी हैं कितने धीरे धीरे अपने घर को बनाते हैं, हम देखते हैं हमारे घर के सामने या कहीं अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आप देखते हैं कितना सुंदर घोंसला बनता है इनका, धीरे धीरे एक एक पत्ते लाके, कैसा ब्यूटिफुल नेचर, नेचर के एक एक पत्तों से जोड़ कर अपना घर बनाते हैं। और हम ह्यूमन भी इसी से सीखना चाहिए कि हमें भी धीरे धीरे धीरे धीरे अपने घर को सजोना चाहिए, सजाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए।
0: और बहुत कुछ सीख सकते हैं बर्ड से, क्या लाइक यू नो पेशेंस, इतने
1: ऑब्वियसली,
0: पेशेंस के साथ वो घर बनाते हैं, घर बसाते हैं, और ऑल्सो टुगेदरनेस।
1: यस। एंड इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड लोगों के पास पेशेंस की कमी है। लाइक ऑफ पेशेंस अगर हम बात करें तो तुरंत लाइक 30 सेकेंड्स
0: एवरीथिंग शुड
1: में,
0: बी इन अ
1: या
0: स्पॉट।
1: इन स्पॉट, एंड 30 सेकेंड्स में उन्हें सब कुछ चाहिए। लाइक रील की जो दुनिया है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पेशेंस को कम कर रही है। और ये ज्ञान हमें बर्ड से मिलता है कि पेशेंस होना चाहिए, हर चीज धीरे अपने समय पे होता है। और अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो थोड़ा सा उनके लिए कुछ हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी बहुत है हैदराबाद में, और एज ए ह्यूमन अगर आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, तो आप किचन में चले जाते हैं, आप पानी पी लेते हैं, लेकिन बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकते। पहले अब जैसे सिटीज़ में थोड़े पेड़ कम हो गए, उनके रहने का जगह भी कम हो गया है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमें प्यास लगती है तो हम खुद पानी ले लेते हैं, लेकिन हम उनके लिए ये स्टेप कर सकते हैं कि घर के सामने

0: या बॉल पे या आपके बालकनी में किसी बॉल में थोड़ा सा पानी भर के रख दीजिए, और ये उनके लिए है जो जिसकी ख्याल हम शायद ख्याल में हम एक कदम उठा सकते हैं।
1: और कुछ और कर सकते हैं जागृति इस वीकेंड पे, ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे सेलिब्रेट करने। पूछो क्यों
0: क्यों,
1: और कैसे?
0: कैसे?
1: बाइनोकुलर्स लो और नियर बाय लेक या पार्क को जाओ, स्पेंड करो, ऑब्जर्व द नेचर एंड दैट्स ऑल।
0: यस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती हूँ मैं आपको, बहुत किसी से बताना मत, ठीक है? जब हम नेचर के साथ रहते हैं, उसकी हवाओं में, बर्ड्स के आसपास, वो ब्यूटीफुल क्रिएचर्स आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं। वो रंगीन पंखों वाले पक्षी आपकी लाइफ भी रंगीन बनाते हैं, जस्ट लाइक रेनबो। टेक इट अवे।

यस, वेलकम बैक लिसनर्स। सो हम गानों की इस सफ़र में ब्यूटीफुल जर्नी पे निकल चुके हैं, लेकिन इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं, गाने हैं, बातें हैं, नॉलेज की चीज़ें हैं और थोड़ी न्यूज़ भी हैं। तो स्टूडियो क्लॉक में टाइम है 10:56 एंड 11 o'clock को हमारा है न्यूज़ सेगमेंट, तो यहीं पे रहिएगा और थोड़ा न्यूज़ भी सुनते रहेंगे। एंड बिफोर यू गो एनी फर्दर, यस इट्स ऑलरेडी वार्म आउटसाइड हैदराबाद इन एंड Definitely, nothing holds back. So if you have not had your water yet, this is a reminder. Grab a glass of water, stay hydrated and take care of yourself and take it away.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: Rainbow 101.9.
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: దేశం మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
4: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థే

0: 300 మార్కులు సాధించిన
1: దేశం మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
2: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థి.
3: సిరి పెయింటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, హిమాయత్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్. ఈ వేసవి సెలవుల్లో పెయింటింగ్ లో ఆసక్తి ఉన్న వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వబడును. ఫోన్ నంబర్ 9849419642.
4: वेलकम बैक लिसनर्स. सो आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स डे. और सच बताऊँ, पक्षियों के साथ हमारे पुराणों का भी बहुत अच्छा रिश्ता है. कभी कभी ना दोस्तों, हमारे इंडियन ट्रेडिशंस और नेचर का के बीच इतनी खूबसूरत कनेक्शन होता है कि सुन के ही मज़ा आ जाता है, सुकून मिलता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं. आज बात करते हैं स्वाति नक्षत्र और बर्ड्स के कनेक्शन की. पुरानी कहानियों और लोगों ने कहा है कि एक पक्षी होती है, चातक पक्षी, जो बारिश की हर बूंद नहीं पीती. कहते हैं वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद का इंतज़ार करती है. अब साइंटिफिकली ये प्रूव हो या ना हो, लेकिन इसकी फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है. सोचिए एक चिड़िया जो पेशेंस रखती है, जो हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, जो बस उस एक सही बूंद का वेट करती.

सकती है। और ऑनेस्टली लाइफ भी कुछ ऐसी ही है ना, आपकी भी लाइफ, मेरी लाइफ, हम सब की लाइफ। हर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं होती, हर रास्ता हमारा नहीं होता। कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है और ट्रस्ट करना पड़ता है कि सही वक्त पे सही चीज़ ज़रूर मिलेगी। इसीलिए इंडियन पोएट्री और लिटरेचर में चातक पक्षी को होप और वेटिंग का सिंबल माना गया है, पेशेंस का सिंबल माना गया। और मुझे लगता है कि आज की फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हम सबको थोड़ा सा चातक पक्षी बनना चाहिए, चातक बर्ड बनना चाहिए। हर चीज़ के पीछे भागने के बजाय सही चीज़ का पेशेंटली वेट करना भी एक आर्ट है। पेशेंस इज आर्ट। मैं हूँ आपकी आरजे जागृति, हमारे साथ हैं आरजे प्रिया, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। टेक इट अवे।

0: राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

वेलकम बैक लिसनर्स। सो आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। मैं हूँ आपकी आरजे जागृति और हमारे साथ स्टूडियो में हैं आरजे प्रिया। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हफ्ते का सबसे बड़ा इमोशन और नेशनल मोमेंट है। हमने बहुत सारी बातें की, हमने क्रिकेट के बारे में बात की, हमने बर्ड्स के बारे में बात किया, और अब थोड़ी नेशन की बात करते हैं। 7 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025, ये वो दिन थे जब इंडिया ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया था जो हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए अमर हो गया। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन सिंदूर की, जो भारतीय महिलाओं के सिंदूर छीनने वालों के लिए किया गया था। आप सबको याद होगा, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक दर्द दहशत वाली घटना हुई थी। कितने मासूम लोग अपनी जान दे दिए थे, पूरा देश हिल गया था। और फिर वो रात आई 7 मई 2025 का, जब इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सिर्फ 22 मिनट के अंदर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को प्रिसाइजली स्ट्राइक किया गया, निशाने लगा के, बहुत ही सतर्कता से, कि बस कैंप्स को ही निशाना बनाया गया। और फिर 7 मई से 10 मई तक चलने वाले इस ऑपरेशन के लिए सीज फायर अनाउंस हुआ, और फिर से एक बार इंडिया की मिलिट्री दुनिया के सामने सबसे मजबूत आर्म फोर्स के रूप में उभर के आई। ये ऑपरेशन हम सबको रिमाइंड कराता है हमारे जवानों के ब्रेवरी के बारे में, उनकी सेक्रीफाइस के बारे में, और उनका नेशन के लिए डिटर्मिनेशन के बारे में। हम अपने घर में सुकून से, बिना किसी डर दहशत

के दो समय के खाने खा पाते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे जहाँ भी ऐसे कुछ बातें हो रही हैं वहाँ डट कर खड़े हैं। उनके लिए शायद ये ड्यूटी ज़्यादा प्रायोरिटाइज है। हम अपने घर में सुकून से सुरक्षित बैठे हैं तो आज उनकी वजह से। आई सेल्यूट टू एवरी सोल्जर्स आउट देयर। जय हिंद। एंड विद दिस लेट्स टेक इट अवे।

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani from Rainbow 101.9, Rainbow Adds Color to Your Life. I'm your RJ Jagriti, and today in studio we have RJ Priya. So, आज हम बात कर रहे थे कितनी सारी लाइक बर्ड्स के बारे में बात किए, नेशंस के बारे में बात किए, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किए और एक और डे भी है आज, यूरोप डे. सो यूरोप डे आज के टाइम में यूरोप डे हमें ये याद दिलाता है कि जब अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज और ट्रेडिशन एक साथ आते हैं तब प्रोग्रेस और हारमोनी दोनों पॉसिबल होते हैं. FM पर बैठ कर जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो नोटिस करिए कि इंग्लिश सॉन्ग के में लंदन से एक EDM ट्रैक, स्वीडन से एक क्लासिकल मेलोडी, इटली से म्यूज़िक भी बिल्कुल यूरोप की तरह बाउंड्रीज को क्रॉस करता है. आज सुबह से हम इंग्लिश और हिंदी गानों का मिक्सअप सुन रहे हैं, जो हमारा वेस्टर्न और नमस्ते हेलो आदाब का मिक्सअप है. ऐसे ही हम

यूरोप डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। आज 9th में और दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है ये यूरोप डे। ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि पीस, यूनिटी और कोऑपरेशन का सिंबल माना जाता है। जहां यूरोप की कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वॉर की जगह अब पार्टनरशिप और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, और वही सोच आज यूरोपियन यूनियन की फाउंडेशन है। हर जगह हर दिन एक नए सेलिब्रेशन होता है, और उस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं एक सीख, एक मोटिवेशन, एक नॉलेज रहता है। ऐसे ही हम और भी बातें करेंगे। आप सुन रहे आकाशवाणी फिल्म रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ और रंगीन। मैं हूँ आपकी आरजे जागृति, हमारे साथ हैं आरजे प्रिया। टेक इट अवे।

हर जगह हर दिन एक नए सेलिब्रेशन होता है, और उस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं एक सीख, एक मोटिवेशन, एक नॉलेज रहता है। ऐसे ही हम और भी बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फ्रॉम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। मैं हूँ आपकी आरजे जागृति, हमारे साथ हैं आरजे प्रिया। टेक इट अवे।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कल हम बात कर रहे थे मई 9 दिन के बारे में, और आज है यूरोप डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे। और इस खूबसूरत दिन पर हम याद कर रहे हैं भारत के एक महान कवि, फिलोसोफर, आर्टिस्ट और नोबेल प्राइज विनर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ जयंती उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर वेस्ट बंगाल और कल्चरल सर्कल्स में बहुत शिद्दत के साथ। उन्होंने सिर्फ पोएम्स नहीं, सॉन्ग्स नहीं लिखे, बल्कि इमोशंस को शब्दों पर जीना सिखाया। क्या कहती हो जागृति?
1: जी हाँ, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर शोनर बांग्ला, दोनों ही इन्हीं की रचनाएं हैं। सोचिए उनके वर्ड्स जो दो देशों की पहचान बन गए हैं। उनकी राइटिंग्स नेचर, लव, फ्रीडम और ह्यूमैनिटी से डीपली कनेक्टेड थी। आज भी उनकी कविताएं और उनके संगीत सुनते ही एक अलग सुकून मिलता है। तो स्पेशल मॉर्निंग पर अगर आपको भी किसी लाइन ने इंस्पायर किया हो, किसी पोएम ने टच किया हो, तो उस फीलिंग को सेलिब्रेट कीजिए। और अब मुझे जो उनकी सबसे अच्छी किताब लगी थी वो है गीतांजलि। गीतांजलि एक बार आपको जीवन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन उसमें शुरू में कविताएं आपको पूरा आपके लाइफ से रिलेटेड लगेंगी, और धीरे धीरे जैसे वो पेजेस बढ़ते जाएंगे, आपका चैप्टर्स बढ़ते जाएगा, वो एक एक जीवन के पहलुओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप शुरू में बचपन में कैसे हो, आप पढ़ाई करते हैं तो कैसे हो, क्या क्या फीलिंग आपके अंदर आती है जब आप अपने जीवन के लास्ट पड़ाव पे रहते हैं। तो अगर आप इनकी गीतांजलि किताब कहीं आपके आसपास लाइब्रेरी में है, आपके घर पे है, तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो लाइंस इन्होंने मेंशन किया है बहुत ही सुंदर। उसमें से एक है जो मुझे बहुत फेवरेट है, वी हैव नो टाइम टू लूज। ध्यान से सुनिएगा, वी हैव नो टाइम टू लूज एंड हैविंग नो टाइम वी मस्ट क्रम्बल फॉर आर चांसेस। वी आर टू पुअर टू बी लेट। यस, वी आर टू पुअर टू बी लेट। सो किस बात की देरी? कोई देरी नहीं है। और सुनते हैं एक और गाना जो आदित्य रेखरी जी का है, साहिबा मूवी से।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Welcome back, listeners. This is me, Priya Bandavi, and I have Jakriti with me in the studio. आजकल ना बोर होना almost impossible हो गया है. दो सेकेंड फ्री हुए नहीं फ़ोन हाथ में आ जाता है. लेकिन फन फैक्ट ये है कि बोर्डम एक्चुअली ब्रेन के लिए हेल्दी होता है. रिसर्च कहती है कि जब हम बोर्ड होते हैं तब ब्रेन की क्रिएटिव थिंकिंग वाला सेक्शन एक्टिव हो जाता है. जैसे बेस्ट आइडियाज शार में आते हैं या वॉकिंग के टाइम आते हैं या जब हम अकेले हैं बैठते हैं सोचते हैं तब याद आते हैं, क्योंकि तब ब्रेन को फाइनली थोड़ा एम्प्टी स्पेस मिलता है. हर सेकेंड एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी बोर्डम इज ऑल्सो मैंडेटरी. क्या कहती हो?
3: हाँ, मतलब बोर होना है, बोर नहीं हो रहे हैं आप उसमें और क्रिएटिव हो रहे हैं आप उसमें और खुद के ब्रेन सेल्स को एक्टिव कर रहे हैं कि हाँ कुछ तो आज क्रिएटिव करना. एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, ट्रस्ट मी. ऑनेस्टली बताओ, सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं? क्या कर कहता है आपका ब्रेन? फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, व्हाट्सएप चेक करो, न्यूज़ देखो और 30 मिनट्स बाद फील करो आज कुछ अच्छा किया है क्या, अभी कुछ काम नहीं किया. ये डिजिटल एडिक्शन रियल है और इसका सॉल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स.
2: वेल, वही बता रही थी मैं, कभी कभी बोर्डम भी रिचार्ज बटन होता है. साइलेंस और बोर्डम दोनों अंडररेटेड सुपर पावर्स है जिसको हम यूज़ करना चाहिए और कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ क्रिएटिव इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है.
3: हाँ, और ऐसा कहा गया है, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं, मैं थोड़ी सर्वेस पढ़ती रहती हूँ, उसमें ये लिखा है कि आप अगर आप सुबह सुबह उठ के पहला काम फ़ोन देखते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी को भी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आप अभी सो के उठे हैं और पहला चीज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन. तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए फ़ोन असाइड कर दीजिए और बाहर जाइए. टेक अ डीप ब्रीथ, मेडिटेट फॉर टेन मिनट्स. कुछ अवॉइड करिए कि शुरू के 10 मिनट 30 मिनट आप खुद पे काम कर रहे हैं, खुद को प्रोडक्टिव कर रहे हैं, खुद की सोल के लिए कुछ काम कर रहे हैं. और ट्रस्ट मी, वो बोर नहीं करेगा आपको. जैसे प्रिया ने बताया कि कुछ बोर नाम की चीज़ ही नहीं होती है, आप उस टाइम पे और क्रिएटिव होते हैं. तो आप, ये नहीं कह रही हूँ आप फ़ोन मत यूज़ करिए, आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, आपके इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, वो सब चेक करिए. लेकिन वो शुरू के सही टाइम पे, वो शुरू के जो 30 मिनट है वहाँ पे आप खुद पे काम करिए, बोर हो जाइए, थोड़ी क्रिएटिव बनिए. और सुनते रहिए हमारे साथ गाना. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फ्रॉम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. मैं हूँ आरजे जागृति, हमारे साथ है प्रिया. टेक इट अवे.

वेलकम बैक लिसनर्स। सो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फिल्म रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ और रंगी। मैं हूँ आपकी आरजे जागृति और हमारे साथ हैं आरजे प्रिया। सो अभी तक हमारा चल रहा था गानों का सफ़र। कितनी सारी बातें की हमने, नॉलेज के बारे में, सेल्फ हेल्प के बारे में, बुक्स के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, वर्ड्स के बारे में, और आपको तो पता ही होगा हमारा 12 बजे से 1 बजे का सेगमेंट हेलो रेनबो में। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं 1 से 2 के सेगमेंट में। क्षमा चाहती हूँ, 1 से 2 बजे के सेगमेंट में आपका जो फेवरेट सेगमेंट है हेलो रेनबो, उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टेंट मैसेजेस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, वो सब मैसेजेस हम आपके पढ़ते हैं। हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो है 0402323-0030। एक और नंबर है 0402323-4822। एक और नंबर भी है 0402970-4715। 1 बजे से ये सेगमेंट शुरू हो रहा है, 1 से 2 बजे। और इसके साथ चिंता मत करिए, अगर आपके पास समय नहीं है बात करने का, कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते

हैं और हम ऑलरेडी सबके मैसेजेस देख रहे हैं। बहुत लोगों ने तो लिखा है, जागृति मैम मेरा सॉन्ग भी बजा दीजिए, तू मेरी जिंदगी है। मैं पंकज पांडे अपनी पूरी टीम के साथ, वाह पूरी टीम के साथ आपको सुन रहा हूँ। और जागृति मैम आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को भी, लोगों की भी एक फरमाइश है कि आप हमारी टीम के लिए एक सॉन्ग सुनाएं। जी बिल्कुल, हम रेनबो इसी के लिए तो हैं, आपकी फरमाइश, आपके लिए गाने। और ये गानों के सफर में गाने की ही तो बात होंगी। यस, आश की फिल्म का सॉन्ग है तू मेरी जिंदगी है। जी सर, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके गाने बजाने का। हमने कुछ ढूंढा भी है, ये गाना अभी हमारे पास नहीं, लेकिन उसी मूवी का एक और गाना है, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ये गाना आपके लिए है। टेक इट अवे।

Welcome back, listeners. You're listening to आकाशवाणी FM Rainbow 101.9. Rainbow के साथ लाइफ रंगीन, और हम ऐसे ही कुछ बातें करेंगे आपसे. आपको तो याद है ना, हमारा कॉलिंग सेगमेंट हेलो रेनबो स्टार्ट हो चुका है 1 से 2 बजे तक. और हमारे नंबर्स हैं, फिर से एक बार बता देती हूँ, 0402323-0030. दूसरा नंबर है 0402323-4821. एक और नंबर भी है 0402970-4715. और आप हमें व्हाट्सएप और इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं 9140-2323-4822. फिर से एक बार नंबर बताती हूँ, 9140-2323-4822. इस पे आप अपने गाने की फरमाइश बता सकते हैं और कॉलिंग शो पे हमसे बात भी कर सकते हैं. और हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे. सब मैं पढ़ भी रही हूँ. बहुत सारे लोगों ने कहा थैंक यू मैम. ओ हाँ जी, आपका गाना हमने बजा दिया, थैंक यू आपके फरमाइश के लिए. और एक आया है मैसेज हमें मेहंदीपट्टनम से, जग्गू मैम एंड प्रिया, यू गाइज रॉक, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, प्लीज़ मेरे लिए गाना बजा दीजिए, MJ का बीट इट. ओ नो, थैंक यू सो मच दीप जी. ये हैं दीप जी फ्रॉम मेहंदीपट्टनम. आपके इस मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही कुछ मैसेज हमें मोटिवेट भी करते हैं, अच्छा भी लगता है. क्यों, कॉम्प्लीमेंट तो सबको अच्छा लगता है, हमें भी लगता है. सो आप कहीं नहीं जा रहे, आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. रेनबो के साथ लाइफ और रंगीन है. मैं हूँ आपकी RJ जागृति, और हमारे साथ स्टूडियो में है RJ प्रिया. टेक इट अवे.

0: यार जागृति, आपने नंबर बता दिए, हेलो रेनबो का प्रोग्राम बता दिया, बट टॉपिक ने नहीं बताया।
1: अरे हाँ, लेकिन हमारे श्रोताओं ने भी तो टॉपिक नहीं पूछा। जी, तो टॉपिक आज का है कि हैदराबाद में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन देखने में और वहाँ पे जाने पे आपको सुकून मिलता है, जहाँ आप अपने अपनों के साथ खुद के लिए जाते हैं। तो ऐसे प्लेसेस हमें बताइए, हमारे साथ शेयर करिए हमारे हेरो रेनबो में। फलक से जुदा।

0: సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం.
1: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
0: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం, అతి తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు గ్రాముకి అత్యధిక రుణం అందిస్తుంది.
1: మీ సమీపంలోని యూనియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ని నేడే సంప్రదించండి.
2: बैक लिसनर्स, तो हमें कॉल्स आने शुरू हो गए हैं. जैसा कि हमने बताया था, ये हेलो रेनबो का सेगमेंट है, तो देखते हैं कौन है हमारे कॉल पे. हेलो हेलो,
3: गुड आफ्टरनून मैडम.
2: गुड आफ्टरनून सर, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम नरसिम्हा रेड्डी है मैडम, प्रेमावती पेज से बोल रहा हूँ.
2: ओके सर, बताइए सर, आज का जो हमारा टॉपिक है हेलो रेनबो का, आपको हैदराबाद की उन प्लेसेस के बारे में बताना है जहाँ वो बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन जाने पे सुकून मिलता है, जहाँ आप अपने अपनों के साथ जाना चाहेंगे. कोई ऐसा प्लेसेस है सर?
3: जी मेरे लिए तो मैडम ये पुस्तक प्रेमियों के लिए स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है मैडम.
2: सर फिर से एक बार नाम बता सकते हैं
3: जी?
2: कौन सा लाइब्रेरी है आप एक बार फिर से नाम बता सकते हैं?
3: स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी.
2: स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, हाँ सर
3: जी, अफजलगंज पे है.
2: अफजलगंज पे जी.
3: जैसे वो चिड़िया रो दौर देखे तो लगता मैडम कोई पुस्तक के मंदिर में जा रहे हम लोग.
2: यस
3: बिल्कुल, मतलब फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, बच्चों को भी आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं. इसमें उसमें गए जाने के बाद बहुत सुकून मिलता मैडम पुस्तक पढ़ते हुए अपन.
2: जी सर बिल्कुल, बहुत ही सुकून. किताबें एक ऐसे दोस्त हैं जहां आपको बस अच्छी बातें मिलती है. आप बिल्कुल सही कहा सर,
3: अच्छे से अच्छे बात मिल जाते हैं मैडम वहाँ पे, हर कोने का, हर किस्म का, सब कुछ आपको सुकून मिलता उधर गए तो.
2: जी
3: हमको जब भी टाइम मिलता था, टाइम लेके भी जाते, टाइम निकाल के भी जाते थे, पढ़ते थे मैडम बैठ के, सुकून से पढ़ते थे. एक एक टाइम तो ऐसा रहता था, टाइम होने के बाद साफ टाइम हो गएगा, बाहर जा सकते बोल के भी बोलते थे, ऐसे भी वक्त था.
2: बिल्कुल सही कहा आपने, लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ किताबों में उन पन्नों में आपको एक सुकून मिलता है. एक एक पन्ने आपकी कहानियां बताती हैं और कभी कभी आपको पता है सर, ये लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो भी किताबों में लिखा है.
3: जी मैडम, वैसे तो हैदराबाद में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन तो मेरे को तो सुकून और लाइब्रेरी में दिखता.
2: सेंट्रल लाइब्रेरी आपने बताया अफजलगंज, राइट?
3: राइट मैडम, थैंक यू.
2: यस थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए नसीमा जी.
3: मैडम एक गाना सुना सकते हैं मैडम?
2: हाँ जी बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास है गाना. वो
3: रामचोर पिक्चर में तेरे संग उम्मीद मिलाई सजना बोल के गाना मैडम.
2: तेरे संग
3: प्रीत लगाई.
2: प्रीत लगाई जी सर, हम कोशिश करेंगे, वो गाना हमारे पास रहा तो.

0: जरूर आपके लिए बजाएंगे। कुछ गानों की फरमाइश आती है, कभी-कभी हमें वो गाने नहीं मिलते हैं, हम उसके लिए क्षमा सॉरी, क्योंकि वो हम नहीं बजा सकते अगर हमारे पास नहीं है। बट हाँ, हम पूरी कोशिश
1: बिल्कुल
0: करते हैं कि कुछ गानों में से हम बजा सकें। बट आप बहुत बहुत धन्यवाद हेलो रेनबो में कॉल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो।
1: आप
0: यस
1: कोशिश करिए, बिल्कुल मिलेगा मेरा वो
0: जी जी
1: गाना।
0: जी सर, जी सर, धन्यवाद सर,
1: ओके थैंक यू मैडम।
0: थैंक यू सर। सो ये थे नसीमा जी, जो उन्होंने बताया कि कैसे उनको किताबों के पास बहुत सुकून मिलता है। उनका जो फेवरेट प्लेस है वो सेंट्रल लाइब्रेरी अफशनगंज में है। सच बताऊं, किताबों में के पन्नों में जो सुकून है ना, वो दोस्ती का जो पैराग्राफ लिखा होता है ना, वो जीवन जीने की जो टेक्निक्स लिखी होती हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और ये मेरा भी एक फेवरेट प्लेस है। और भी कॉलर्स लाइन पे हैं, देखते हैं उनकी क्या बातें हैं। हेलो सर,
1: हरिओम।
0: हरि ओम सर, कैसे हैं आप और अपना नाम बता दीजिए। हेलो रेनबो में
1: हाँ
0: आपका
1: जी,
0: स्वागत है।
1: आभारी हूँ, आपने मेरा स्वागत किया। मेरा नाम विलास पेनुरकर है, नल्ला कुंटा भाग्यनगर में रहता हूँ।
0: जी सर, सर आज का जो रेनबो का टॉपिक है कि हैदराबाद में ऐसी कौन सी प्लेसेस है जो बहुत फेमस तो नहीं है बट लोगों को वहाँ जाना चाहिए, थोड़ा सुकून मिलता
1: अच्छा
0: है, ऐसी कोई जगह
1: अच्छा
0: के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं, हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
1: हाँ जी, वैसे हैदराबाद को मैं तो भाग्यनगर इस नाम से पुकारता हूँ, और
0: अच्छा
1: यहाँ पर स्वामी नारायण गुरुकुल के नाम से एक गुरुकुल है विद्यार्थियों के लिए, जिसको मैंने अपने परिवार के साथ में देखा है। बच्चों को वहीं रहना होता है और इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि बच्चों को सवेरे उठाया जाता है, वहां पे महाराज जी होते हैं, उनके चरण स्पर्श करने पड़ते हैं, और बहुत ही अच्छी शिक्षा भी वहां दी जाती है। और स्वामीनारायण गुरुकुल में उन्हें और एक मैंने बात देखी है कि गुरुकुल के निकट ही गौशाला भी है, और उस गौशाला की विशेषता ये है कि गौओं के अलग अलग नाम हैं, लगभग 50 से 60 गौए हैं, हर एक का अलग अलग नाम है। जैसे आप गंगा करके पुकारेंगे तो जिस गाय का नाम गंगा है वही आगे आएगी।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने आपने गुरुकुल के बारे में बताया कि कैसे वहाँ बच्चों को एक प्रॉपर शिक्षा दी जाती है, उनको सुबह उठना, उनको चीज़ें बताना। एंड ये जो गाय के बारे में आपने कहा, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, इंसान ही नहीं इवन जो,
1: और
0: हाँ
1: एक बात बताना चाहूंगा
0: जी
1: कि
0: सर,
1: वहां पर गौओं के लिए संगीत लगाया जाता है,
0: दैट्स सो
1: गौओं के लिए
0: अमेजिंग।
1: संगीत लगाया जाता है। मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है, तो वो बोलते हैं अगर से हम संगीत लगाते हैं तो गाय ज्यादा दूध देती है।
0: दैट्स सो नाइस, ये बहुत अच्छी
1: तो
0: बातें
1: हाँ
0: बताई हैं आपने सर।
1: जी हाँ जी, साथ साथ वहीं पर निकट बालाजी मंदिर भी है, जिसको पासपोर्ट बालाजी के नाम से बुलाया जाता है,
0: हाँ, ये मैंने भी
1: क्योंकि
0: सुना है इस मंदिर के बारे में।
1: हाँ, तो उसका कारण यह है कि आज से लगभग 20-25 वर्षों के नीचे जब भारत से या अपने भाग्यनगर से कई विद्यार्थी विदेश जाना चाहते थे तो वो क्या करते थे, बालाजी के दर्शन करते थे और बालाजी से प्रार्थना करते थे हमको पासपोर्ट मिल जाए। और ऐसा हुआ है कि लगभग 90-95% विद्यार्थियों को पासपोर्ट मिल गया था, तो उस समय से लोगों ने उसको पासपोर्ट बालाजी इस प्रकार का नाम दे
0: जी
1: दिया है।
0: जी सही कहा, ऐसे ही तो उनका विश्वास और श्रद्धा बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो रेनबो में कॉल करने के
1: और एक
0: लिए।
1: बात मुझे कहनी है,
0: जी सर,
1: एक तो नागार्जुन सागर रोड पर विपासना के नाम से एक आश्रम है,
0: अच्छा
1: विपासना या विपश्यना, यह एक विद्या है जो योग से संबंधित है। वहां पर 10 दिन का शिविर चलता है और
0: अच्छा
1: शहर से दूर है वो,
0: जी सर,
1: अपने मुख्य भाग्यनगर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर अंतर पर है। और वहां पर क्या है कि 10 दिन आपको रुकना होता है, और 10 दिन में केवल आपको आपका एक ही काम होता है, आपको अपने श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है।
0: जी सर,
1: ये
0: वो
1: बहुत ही सुंदर विद्या है,
0: जी
1: जो भी जाता है वहां से बहुत प्रभावित हो जाता है।
0: हाँ, इतनी सारी चीज़ें अगर इंसान अपने अपने खुद की सोल के लिए करेगा तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एफएम
1: आभारी
0: रेनबो,
1: हूँ।
0: यस सर, रेनबो में कॉल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। सो ये थे हमारे सर, जो इतनी सारी चीज़ें बताई उन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या बताया उन्होंने, कहा कि जो ये गाने हैं, ये गाने बस खुद के लिए नहीं होते, वो गाने उनकी गाय के लिए भी प्ले होता है। एंड उन्होंने उससे पता क्या बताया कि गाय दूध ज़्यादा देती हैं। ऐसा तो सुन के अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास भी कोई कोई ऐसा क्रिएचर है, गाय है छोटा।

0: ऐसा डॉग है या कोई भी आप पेट रखते हैं, सुन के देखिए, लगा के देखिए गाने कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ उन गायों के नाम भी हैं। कितनी अच्छी बात होती है ना जब हम ऐसे क्रिएचर्स के नाम रखते हैं, कुछ नाम से बुलाते हैं, गंगा बुलाते हैं, सखी बुलाते हैं, सहेली बुलाते हैं, कुछ ऐसे नाम उनके रख देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने उस गुरुकुल के बारे में बताया जहाँ बच्चों को पूरा उनका सर्वांगीण विकास, उनका इंटेलेक्चुअल से लेके उनको योगा हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। सुबह उठाया जाता है, एक नियमित रूप से उनका व्यायाम कराया जाता है, एक्सरसाइज कराया जाता है। कितनी सारी चीज़ें हैं हैदराबाद में, कितने प्यारे प्यारे लोग बात करते हैं, सुन के अच्छा ही लगता है। ऐसा लगता है कि मैं और भी बातें करूँ, लेकिन बहुत सारे लोग लाइन पे रहते हैं, उनके साथ भी तो बातें करनी है। सो विल बी राइट बैक, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ और रंगीन। टेक इट अवे, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటిసారిగా జనగణనకు సిద్ధమవుతోంది. జనగణన మొదటి దశ ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు దేశంలో మొదటిసారిగా డిజిటల్ విధానంలో ఇండ్ల జాబితా మరియు ఇండ్ల గణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 10 వరకు ఏదైనా డిజిటల్ టూల్లో సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ పోర్టల్ ద్వారా sc.census.gov.in లో మీ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
2: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू हेलो रेनबो. और टाइम है 1:28 PM. हमारे कॉलर रेडी है हमारे साथ. हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो मैम.
1: हेलो मैम.
0: जी कौन बात कर रहे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैम, मेरा नाम प्रियंका है और मैं अमीर पेट से बात कर रही हूँ.
0: हेलो प्रियंका जी, कैसे हैं आप बताइए. आप
1: मैम
0: आज का टॉपिक सुने?
1: जी,
0: जी बताइए, कौन सा ऐसा स्पेस है जो आपको हैदराबाद में थोड़ा अंडररेटेड लगता है बट सुकून मिलता है?
1: एक्चुअली अभी मुझे यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो मैं यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ.
0: अरे वाह, तो और भी आंसर अच्छा होगा.
1: हाँ, बट मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके साथ मैं कभी कभी इन पास की मार्केट है वहाँ जाती हूँ तो मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है.
0: अच्छा,
1: जी
0: हमारे साथ जागृति भी है. आप उन
1: ओके okay.
0: हेलो.
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो
0: बताइए आप.
1: जागृति मैम.
0: हाँ हेलो मैम, हेलो प्रियंका मैम. मैं सुन रही थी प्रिया आपके बारे में बता रही थी, तो आप बताइए कि अभी तक आपने कौन कौन से प्लेसेस अपने आसपास देखा है?
1: जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा नहीं कहीं गई हूँ, AAA मॉल है वहां पर मैं मूवी देखने गई हूँ 2-3 बार.
0: अच्छा
1: हाँ, वहीं के आसपास की मार्केट में ही घूमी हूँ.
0: ठीक है
1: जी
0: ठीक है, कोई बात नहीं मैम. जो भी आप अभी गई हैं ना, वो भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है, और जहाँ भी आप जाइए और भी एक्सप्लोर करिए बहुत सारी चीज़ें. हमारे कॉलर्स भी कई सारी जगह के बारे में आपसे बताए हैं, तो आप
1: यस
0: उस जगह पे जाइए. देखिए, किसी ने बताया लाइब्रेरी के बारे में, किसी ने बताया है एक नया कोई बुक लाइब्रेरी, और एक गुरुकुल के बारे में, मंदिर के बारे में बताया है, एक बालाजी के टेम्पल के बारे में बताया है. तो आप वहाँ पर जाते रहिए, कॉलर्स ने सजेशंस भी दे दिए आपको वहाँ घूमने के लिए. तो बहुत
1: जी
0: बहुत धन्यवाद हेलो रेनबो में कॉल करने के लिए.
1: ओके
0: कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, राइट? अभी वो बहुत न्यू है हैदराबाद में, और उन्होंने बताया अभी थोड़ी जगह ही उन्होंने एक्सप्लोर किया. कोई बात नहीं, कॉलर्स ने ऑलरेडी उनको बहुत सजेशंस दे दिया. और मैं अभी कुछ मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ, और ये है, नमस्ते, मैं मिली तृष्णा हूँ और लखनऊ वाली के नाम से जानी जाती हूँ, और मेरा एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है कृष्ण तरंग के नाम से, मेरी एक कविता है. बहुत बहुत बधाई हो लखनऊ वाली जी, आपकी कविता, आप का काव्य संग्रह भी कृष्ण तरंग, कितना प्यारा नाम है, जो प्रकाशित हो चुका है. इन्होंने कविता भेजा हमारे लिए. कविता कुछ ऐसे है, ये हंसते खेलते खिल खिलाते लोग, तमस मध्य सूर्य

के मुस्कुराते रोग लोग हृदय मस्तिष्क में जूझ जाते लोग गिर ओढ़ आजीवन उर भर भवन में आजीवन दृगों से वाहनी बहाते लोग ये हंसते खेलते खिलखिलाते लोग ये अट्ठास में पीड़ा छुपाते लोग सहेजते रिश्तों में मन दुखाते लोग यह त्याग के भाव में टूट जाते लोग परस्पर पराजय पश्चात पुनः उठ पुनः बढ़ते हैं यह समर को ही निज घर बनाते लोग ये हंसते खेलते खिलखिलाते लोग। कितनी प्यारी कविता है ये, पूरा जीवन का सारांश छुपा हुआ है, पूरा जीवन का महत्व इसमें छुपा हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मिली तृष्णा जी। ऐसे ही अच्छी अच्छी कविताएं हमें भेजते रहिए, हम आपकी कविताओं को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।

0: और एक कॉलर हमारे साथ रेडी है, सुनते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं जयदीप बात कर रहा हूँ मेहदीपट्टनम से। कैसे
0: हेलो जयदीप, कैसे हो?
1: हैं आप? मैं
0: मैं
1: ठीक हूँ
0: मस्त
1: मैडम,
0: हूँ,
1: आप कैसे हैं?
0: थैंक यू थैंक यू। बोलिए,
1: एंड
0: आप टॉपिक
1: प्रिया
0: सुने?
1: जी भी बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, उनको भी ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू थैंक यू। मैं ही प्रिया बात कर रही हूँ वैसे।
1: अच्छा, जी हाँ जी। तो
0: आप आज का
1: आज का
0: टॉपिक सुने?
1: टॉपिक मैंने सुना है, तो
0: ओके
1: ये हैदराबाद में वैसे तो घूमने के लिए बहुत से प्लेसेस है। मैं सिर्फ दो प्लेसेस के बारे में बताऊंगा।
0: जी।
1: एक है यहाँ पर शमशाबाद में, ना मतलब किसी को ज्यादा नहीं पता, इसके बारे में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुआ है।
0: ओके
1: तो शमशाबाद में एक ऐसा टेम्पल है अनोखा, जो काली माता का है। तो
0: ओके
1: इट्स एग्जैक्ट रेप्लिका जो कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली माता का टेम्पल है।
0: हाँ जी। ओ
1: इतना खूबसूरत टेम्पल रहता है, वहां पर जाकर हम पिकनिक स्पॉट जैसे बन जाएगा, और वहां पर हम अपने फैमिली रिलेटिव सभी के साथ जाकर, और बहुत बड़ा मंदिर है वो।
0: पॉजिटिव वाइब्स आते होंगे आपको।
1: हाँ जी, बहुत मस्त रहता है, एकदम ऐसा लगता है कि मैं कोलकाता को बहुत बार जा चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोलकाता में हूँ, इतना ब्यूटीफुल है। और वहां पर लोग भी बहुत सारे, मैक्सिमम भक्त जो रहते हैं वो पूरे बंगाल के ही रहते हैं। हैदराबाद में जो भी बंगालीज रहते हैं उनके
0: ओके
1: लिए तो वो बहुत बड़ा सेक्रेट प्लेस है वो।
0: ओके सर, थैंक यू विद
1: एंड रही
0: शेयरिंग।
1: बात दूसरा प्लेस,
0: हाँ जी
1: ऐसा एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं, लेकिन हैदराबाद में जो नाइट नाइट रहता है, रात की हैदराबाद, बहुत ज्यादा लाइटिंग और बहुत खूबसूरत रहता है, एंड स्पेशली वो फूड स्ट्रीट्स वगैरह।
0: ओके दैट्स रियली
1: जी
0: ग्रेट। आप एक्सप्लोर करते हो? आप हैदराबाद से हो क्या?
1: जी हाँ जी, मैं हैदराबाद से हूँ।
0: दैट्स नाइस, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर।
1: जी थैंक यू।
0: तो वही बोल रहे थे, अभी हम गाने के और चलते हैं। एक गाना आपके लिए रेडी है, मेड इन इंडिया।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक लिसनर्स। सो हेलो रेनबो का सेगमेंट चल रहा है और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं।

0: देखते हैं कौन है कॉल पे। हेलो सर, हेलो सर,
1: दीर्घ आयुष्मान भवा।
0: आयुष्मान भवा सर, नमस्ते सर। सर आपका
1: नमस्ते
0: नाम
1: पा।
0: क्या है और कहाँ से बात?
1: मेरा नाम रमणा यमा,
0: ओके सर,
1: रमणा यमा हैदराबाद रहते। मैं छोड़ा चंद्र जुबली विश्व कल्याण एंटे स्वयं गुरु नमः ब्रह्मांड उन्दीवे ताला बाग
0: अच्छा सर,
1: मा।
0: अच्छा सर। सो आप बता रहे हैं कि हैदराबाद में कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, जो हमारा जो टॉपिक है ये है कि कौन से ऐसे प्लेसेस जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन बहुत सुकून देता है जाने में।
1: అదే మా ఫేమస్ అదే అదే ఎక్కువ ఫేమస్ అదే అమ్మా ఇది జూబ్లీ హిల్స్ లో
0: హా
1: వెంకటేశ్వర గుడి,
0: హా హా
1: తర్వాత చిలుకూరులో బాలాజీ స్వామి.
0: చిర్కుల్ బాలాజీ, హా సర్,
1: ఇవి మొత్తం అన్ని కూడా హైదరాబాద్ లో చూడాలి కానీ ఓపిక
0: హా
1: ఉన్నాయి. ఎన్ని
0: హా
1: గాజులు ఉన్నాయి
0: హా
1: హైదరాబాద్ లో? చాలా ఉన్నాయమ్మా, చాలా ఉన్నాయి.
0: హా
1: మంచి టాపిక్ అడిగినావు, చాలా చాలా ఉన్నాయి. మనం
0: హా
1: ఓపికంటూ పోవాలంతే.
0: हाँ सर, सही कहा आपने कि चार चिरकुल बालाजी बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत
1: हाँ
0: सुकून मिलता है।
1: फेमस है
0: हाँ
1: वो
0: सर,
1: भी, अच्छा है वो भी, जुबली हिल्स का भी और
0: हाँ जुबली हिल्स का,
1: वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल अच्छा है वो भी.
0: हाँ जी, छिन्ना तिरुपति भी कहते हैं शायद उन्हें।
1: हाँ चेन्नई तिरुपति का बोलते हैं
0: हाँ
1: उसे.
0: हाँ सर, ठीक है,
1: अच्छा माँ,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर हेलो रेनबो में कॉल करने के लिए।
1: अच्छा, माँ वैष्णवी जागृति
0: जागृति सर,
1: जागृति है पहचान लिया है मैं, पहचान लिया नहीं
0: हाँ हाँ सर,
1: जागृति.
0: यस
1: अच्छा
0: सर,
1: अच्छा
0: पहचान लिया
1: अच्छा
0: आपको।
1: अच्छा माँ बहुत बहुत दीर्घायुष्मान भवा.
0: थैंक यू सर,
1: थैंक यू माँ.
0: धन्यवाद सर। सो इन्होंने बताया कि हैदराबाद में जो चिरकुल बालाजी है और ये हमारे बंजारा हिल्स में छिन्ना तिरुपति है, उनके बारे में बताया कि उनको बहुत सुकून में, हाँ टेम्पल्स ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ आपको जो आपके डेली लाइफ में हो रहा है उसको छोड़ के जाने पे वहाँ थोड़ा आपको सुकून मिलता है। देखते हैं और कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो सर,
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: सर,
1: नमस्कार जी. प्रिया जी,
0: मैं जागृति बोल रही हूँ सर, प्रिया हमारे साथ हैं।
1: हाँ, अच्छा अच्छा जागृति.
0: यस सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम प्रभाकर है.
0: हाँ आप कहाँ से
1: हेलो,
0: बात कर रहे हैं सर?
1: हम अभी तो हैदराबाद आ गया, कल तक बेंगलोर में था.
0: अच्छा, सर जो
1: आज
0: आज का हेलो रेनबो का टॉपिक है कि हैदराबाद में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन
1: हाँ
0: आप
1: वही
0: वहाँ
1: है.
0: पे जाते हो तो सुकून मिलता है।
1: हाँ, आओ बोल
0: जी सर,
1: लाइन पे. आन एयर
0: हाँ
1: मैडम, तो
0: हाँ हाँ ऑन एयर हैं सर आप।
1: मैं बोले प्रभाकर बात कर रहा हूँ. मैडम सब्जने बोलती है चारमीनार बहुत अच्छी है,
0: हाँ सर,
1: मगर चारमीनार की सरकार और एक है खैरताबाद के अंदर
0: हाँ,
1: आनंद नगर है. आनंद नगर के रास्ते पे गए तो लेफ्ट साइड में है और एक चारमीनार है,
0: अच्छा,
1: अभी तक नहीं देखा कोई. कोई देखा
0: ओ
1: होगा, बहुत कम देखता है. वो इतना शानदार है, ये झलक देती है उसका देखे तो.
0: हाँ,
1: फ्रेश, अभी भी फ्रेश रहता.
0: आनंद नगर के आसपास आपने बताया,
1: आनंद नगर, आनंद नगर पहचानती ना, कैरताबाद के अंदर से गए
0: हाँ हाँ
1: तो.
0: खैरताबाद दिखा है, या
1: हाँ आनंद नगर बोल के है.
0: हाँ
1: आनंद नगर की पहले लेफ्ट साइड में रहता,
0: हाँ हाँ
1: शानदार है. चारमीनार, चारमीनार बिल्कुल. ये छोटी
0: हाँ
1: चारमीनार है, वो बड़ा चारमीनार है. मगर वो
0: अच्छा,
1: बड़ा चारमीनार पुराना थोड़ा हो गया, मगर फिर ये तो कलिज बनाया आज बनाया बोल के सरकार रहता, उतना शानदार है.
0: अच्छा फिर,
1: हाँ
0: जी सर, जी सर,
1: और एक अपना बिरला टेम्पल भी शानदार है.
0: बहुत शानदार सर,
1: आपकी
0: सही
1: वो
0: कहा,
1: आपकी ऊपर है, आपकी ऊपर है. अभी बात कर रहे हैं ना आप,
0: हाँ सर, जी सर,
1: आपकी बाजू ऊपर है.
0: हाँ सर, सही कहा आपने, यहीं पे
1: हाँ
0: पास में ही है
1: बहुत शानदार है
0: आकाशवाणी।
1: वो भी. वो पालाराती बोलती ना उसको,
0: हाँ
1: बहुत बहुत शैन रहती है.
0: जी सर,
1: पूरा पूरा दिखता है हैदराबाद
0: जी
1: पूरा.
0: बहुत सुंदर दिखता है, मतलब आप ऊपर टॉप हिल वाले पोजीशन पे जाओगे टेंपल चढ़ के तो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है सर, बहुत सारे
1: हमारा
0: लोग,
1: आकाशवाणी दिखेगा वहां से,
0: हाँ हाँ वो भी दिखता है सर,
1: दिखा दिखा के ना. राइट,
0: हाँ
1: ओके, थैंक यू. वॉलेट प्रभाव
0: हाँ
1: करा, नमस्कार जी.
0: हाँ रेनबो में कॉल करने के लिए शुक्रिया। कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, बता रहे थे कि एक चार मीनार को छोड़ के एक छोटा चार मीनार भी है जो आनंद नगर में है। जी सर, हम जरूर वहाँ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विला टेम्पल से आकाशवाणी भी दिखता है जो हमारे जस्ट बाजू में है। जी सही कहा आपने। और भी एक कॉलर्स को लेते हैं, देखते हैं वो कौन है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो सर।

0: बोलिए, कौन
1: जी
0: बात कर रहे हैं,
1: लाइब्रेरी
0: आप
1: हैं
0: कहाँ से
1: आप?
0: बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप ऑन एयर हैं
1: हाँ मैं विजय बात कर रहा हूँ।
0: जी, बोलिए विजय जी, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। आप टॉपिक सुने आज का?
1: हाँ हाँ एक बार फिर से दोहराइए ना।
0: हैदराबाद में ऐसा कौन सा प्लेस है जो फेमस नहीं है बट आपको बहुत पसंद है वहाँ जाना?
1: हाँ मैं एक्चुअली शेखपेट पे रहता हूँ, तो
0: जी
1: शेखपेट के पास यहाँ पर एक प्लेस है मलकम चेरू करके। तो
0: ओके ओके
1: मलकम चेरू वो नॉर्मली मतलब ऐसा है कि वहाँ पर लोग सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए आते हैं,
0: हाँ जी
1: और इतना मतलब इतना सुकून लगता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और झील होती है बड़ी सी, एंड वहाँ पर आपको वर्कआउट करते हुए बहुत लोग मिलेंगे।
0: अच्छा जी, रनिंग के लिए वॉकिंग के लिए जाते हैं
1: हाँ
0: आप?
1: हाँ हाँ तो सुबह सुबह बहुत मस्त लगता है और वहां से सनराइज भी दिखता है।
0: हाँ, मैंने सुना है सनसेट और सनराइज पॉइंट भी अच्छा है उधर से।
1: ये शेखपेट के पास है मलकम चेरू करके। हाँ
0: नया से बना है ना, रिसेंटली रेनोवेट हुआ है?
1: एक्चुअली रिसेंट रिसेंटली बना है ये।
0: हाँ जी
1: ये
0: जरूर,
1: और आप बहुत अच्छा बोल रहे हो आप।
0: थैंक यू जी,
1: वेलकम वेलकम
0: थैंक यू
1: वेलकम।
0: फॉर कॉलिंग। सो हाँ, बता रहे थे विजय जी कि मलकम चरू, पीरन चरू जैसे हमारे लेक्स है उनको भी चेरिश करना है जो नए बने हैं, उनके अराउंड वॉकवे बना है, रनवे बना है, लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिलीज के साथ शाम में जा रहे हैं पार्क्स में लेक व्यू के साथ और एंजॉय कर रहे हैं। एंड अप नेक्स्ट वी हैव अ कमर्शियल ब्रेक, प्लीज स्टे ట్యూన్.
2: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపు మృగు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
3: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन, और यही रंगीन और म्यूजिकल सफ़र हमारा शुरू हुआ था 10 बजे से लेके। कितनी सारी बातें की हमने, बर्ड्स के बारे में, किताबों के बारे में, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, हमने मैसेजेस पढ़े आपके, आपसे बातें किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात किया था। अब ये हमारा सेगमेंट, ये हमारा जर्नी यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट शो डबल का मीठा भी यहीं पे शुरू होगा। हमारे नेक्स्ट आरजे भी यहाँ आ चुके हैं। सो ऐसे ही सुनते रहिए गाने हमारे साथ, आप बने रहिए, जुड़े रहिए। और प्रिया जी, क्या कहना चाहेंगी आज के शो के बारे में, कैसा लगा आपको पूरा?
1: गाने का सिलेक्शन अच्छा था, टॉपिक्स अच्छे थे, बहुत सारे खबर दी है, खबर ली है, गाने सुने हैं, गुनगुनाए हैं।
0: यस, सो विद दिस वी आर यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी फिल्म रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मी जागृति, आरजे जागृति एंड आरजे प्रिया साइनिंग ऑफ।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: पता है,
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीनॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आरजे यल्लेश्वरा राव से आप अलाई पलाई प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 35 सेकंड हुआ चाहते हैं। सामाइन, पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

की खूबसूरती कहा जाए तो संगीत इन अल्फाज की रूह है। दोनों का बाहमी ताल्लुक इतना ही गहरा है कि एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर मुकम्मल नहीं होता, यानी कि एक दूसरे के लिए ये लाजिम और मलजूम है। आइए सुनते हैं फिल्म रज़िया सुल्तान से लिया गया नगमा।

0: गीत दरअसल ऐसे अशआर या अल्फाज का मजमुआ होता है जो इंसान के जज्बात, ख्यालात और एहसासात की अक्कासी करते हैं। जब इन अल्फाज को धुन और सुरों के साथ पेश किया जाता है तो वो संगीत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह गीत और संगीत मिलकर दिलों पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। सामाइन, आइए सुनते हैं आंधी फिल्म से लिया गया ये दो गाना।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी। लो

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सामाइन, अभी आप आंधी फिल्म से लिया गया गीत समाप्त फरमा रहे थे। कदीम ज़माने में इंसान अपनी खुशी, गम, मोहब्बत और दीगर जज्बात के इजहार के लिए गीत और संगीत का सहारा लिया है। इब्तिदा में लोग सादा अंदाज में गाते थे और वक्त के साथ साथ मौसीकी के आलात ईजाद हुए जिन्होंने संगीत को मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बना दिया। आज भी दुनिया की हर तहजीब और सकाफत में गीत और संगीत को ख़ास मुकाम हासिल है। सामाइन, आइए अब सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से लिया गया ये दो गाना।

ये इश्क नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सामाइन, गीत और संगीत का बाहमी ताल्लुक़ इंसानी जज्बात से बहुत मजबूत है। खुशी के मौके पर खुशी के गीत गाए जाते हैं, जबकि गम के वक्त दर्द भरे धुनें इंसान का दिल के बोझ हल्का करती है। मोहब्बत के इजहार में भी गीत और संगीत अहमियत के हामिल होते हैं, और ये अपने सुर, ताल, धुन और लफ्ज़ों की कारीगरी से अपना किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी गीत से ज़रूर मुतासिर होता है। सामाइन, आइए अब सुनते हैं रॉकी फिल्म से लिया गया इनगमा।

तालीम और तरबियत में भी गीत और संगीत की बड़ी अहमियत है। बच्चों को नज़में और सबक मौसीकी के ज़रिए आसानी से याद करवाए जाते हैं, जैसे एक्शन सॉन्ग्स वगैरह। इससे ना सिर्फ याददाश्त बेहतर होती है, बल्कि सीखने के अमल में भी दिलचस्पी पैदा होती है। बच्चे खेल खेल में गाते हुए, झूमते हुए सीखने की तरफ रागिब होते हैं। सामिन, आइए आप सुनते हैं फिल्म जूली से लिया गया एक गीत। फिल्म रॉकी से लिया गया इनगमा।

फिल्म रॉकी से लिया गया दो गाना अभी आपने सुना। आज के दौर में गीत और संगीत ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। यूट्यूब, स्पॉटी, ऐप म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म ने मौसीकी की दुनिया के लिए एक उसत पैदा कर दी है, जिसकी मदद से दुनिया के हर कोशे में इसे सुना जा सकता है। अब लोग अपनी पसंद की गीत भी किसी वक्त सुन सकते हैं और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सामाइन, आइए सुनते हैं फिल्म जीने की राह से लिया गया गीत।

आपने सुना। सामईन गीत और संगीत न सिर्फ तफरी का ज़रिया हैं बल्कि इन्हें सुकून और रूहानी तस्कीन भी फराहम करते हैं। कई लोग परेशानी और थकन के वक्त मौसीकी सुनकर सुकून महसूस करते हैं। यही वजह है कि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। सामईन आइए सुनते हैं माचिस फिल्म से लिया गया ये गीत।

फिल्मी गीतों की इब्तिदा ई फिल्में सनत के आगाज के साथ हुई। जब खामोश फिल्मों का दौर ख़त्म हुआ और बोलती फिल्में सामने आई तो गानों और गीतों की अहमियत बढ़ गई। हिंदुस्तानी सिनेमा में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसके बाद फिल्मी गीतों का बाकायदा आगाज़ हुआ। इब्तिदा में गीत सादा और रिवायती अंदाज में पेश किए जाते थे और ज़्यादातर क्लासिकी मौसीकी पर मबनी होते थे। सामाइन, आइए सुनते हैं फिल्म गुलामी से लिया गया इनगमा।

वक्त गुजरने के साथ साथ फिल्मी गीतों में जिद्दत आई। 1950 और 1960 की दहाई को फिल्मी मौसीकी का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले जैसे अजीम गुलकारों ने अपनी आवाज़ के जादू से लोगों के दिल जीत लिए। इनके गीत आज भी मकबूल हैं और हर आने वाली नस्ल इसे शौक से सुनती जा रही है। समय आइए अब सुनते हैं फिल्म हीरो से लिया गया एक गीत।

फिल्मी गीत सिर्फ तफरी का जरिया नहीं बल्कि माशरे की भरपूर अक्कासी करते हैं। मोहब्बत, वतन परस्ती, दोस्ती, गम, खुशी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को फिल्मी गीतों में खूबसूरती से पेश किया जाता है। बाज़ गीत इंसान को हौसला देते हैं और बाज़ गम बांटते हैं और बाज़ खुशियों को दोबाला कर देते हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म खानदान से लिया गया एक गीत।

जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए फिल्मी गीतों को नई जहत दी है। अब डिजिटल मौसीकी, जदीद आलात और नए अंदाज के जरिए गीत तैयार किए जाते हैं। ए आर रहमान जैसे मौसीकारों ने फिल्मी मौसीकी को आलमी सतह पर पहुंचा दिया और हिंदुस्तानी मौसीकी को नई पहचान, आन बान शान दी, जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए एक काबिले फख्र बात है। सामाई, आइए सुनते हैं फिल्म सिलसिला से लिया गया दो गाना।

मुख्तसर ये कि फिल्मी गीतों का सफ़र माजी से हाल तक खूबसूरत दास्तान की तरह है। ये गीत हमारी सकाफत, रिवायत और जज्बात का आईना भी है। फिल्मी गीत हमेशा हमारी ज़िंदगी में खुशियों और यादों का हिस्सा रहेंगे, आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करते रहेंगे।

बुलाए नहीं भूलते के तहत अभी आपने सुरीले नाकाबिले फरामोश नगमे समात किए। सामाइन आइए सुनते हैं कल बज़्म नेरंग में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स की तफसील। कल बज़्म नेरंग की महफिल सजेगी

रात 9:30 पर इसका आगाज़ होगा हर्फ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश फहमिदा फहमोश की है। भुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने नाकाबिले फरामोश सुरीले नगमे सुनाए जाएंगे। पयाम शब जनाब जैदी साहब का होगा। ये था कल बज़्म नेरंग में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। सामाइन आइए बज़्म के आखिर में सुनते हैं पयाम शब। तहरीर और पेशकश जनाब जैदी की है।

अभी आप बयां में शब्द समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर और पेशकश जनाब जैदी की थी। सामाइन, इसी के साथ ही बज़्म नरंग अपने इख्तिताम को पहुंचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म नरंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शब बख़ैर, आदाब।

0: ये आकाशवाणी FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर है। रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी खबरें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम TVK प्रमुख

0: सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत यानी सुनहरे दौर के वो नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है, गोल्डन एरा के वो नगमे जो हम उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तिरकना चाहते हैं उस पर। ये वो नगमे होते हैं जो हमारे दिल के इतने करीब हैं कि जब भी हम सुनते हैं ऐसा लगता है

हम उसी दौर में चले गए हों। और बात जब गोल्डन एरा की होती है तो 1947 या यूं कहें 1940 से लेकर 1960 और 65 के बीच के जो नगमे हैं वो सब हम सब के दिल के बेहद करीब हैं। उन्हीं नगमों में से हम ख़ास तौर से उन नगमों को चुनकर लाए हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो दौर था जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी तकनीक नहीं थी, उसके बावजूद ऐसे फिल्में बना गए हमारे बुज़ुर्गों ने कि हम हमेशा उसको याद करते हैं और ताक़यामत शायद याद करते रहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला एक बहुत ही खूबसूरत नगमा गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में, फिल्म आज़ाद से। यह फिल्म आई थी 1955 में। SMS नायडू के निर्माण और निर्देशन में बनी है फिल्म, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी, ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शामी और एस नज़ीर वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है श्री रामचंद्र ने। इसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी और उषा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में, गोल्डन हीरा का ये वो हीरा जो हम बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल के बेहद करीब है।

लता मंगेशकर और मन्नत साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म चोरी चोरी से, और ये फिल्म आई थी 1956 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। अगला नगमा इस महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, यह फिल्म आई थी 1957 में जिसका नाम था दो आंखें और 12 हाथ। यह फिल्म अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म थी और इसके लिए इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले थे। वी शांताराम साहब के निर्देशन में, निर्माण और निर्देशन में बनी यह फिल्म जिसको लिखा था जीडी मेडुलकर ने, और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में खुद वी शांताराम, संध्या, बाबूराव पेंडारकर और उल्हास के साथ बीएम व्यास वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा भरत व्यास ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा वसंत देसाई साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म को 1957 में नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म को सिल्वर बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइज ऑफ द जूरी के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड से भी नवाजा गया वी शांताराम जी को। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, जिसे सुनकर आप बिल्कुल उसमें खो जाएंगे। ये गोल्डन एरा के वो हीरे हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही हम हमेशा सुनते रहें और ऐसे ही गुनगुनाते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं फिल्म दो आंखें और 12 हाथ के इसी नगमे के साथ।

अगर सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत की, गोल्डन एरा के वो नगमे जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो नगमे हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब है और ये वो नगमे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये उस दौर के नगमे हैं जो बहुत पीछे छूट गए लेकिन आज भी बसते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर से उसी हकीकी दौर में चले गए हों। ऐसा ही एक नगमा, अगला नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से। ये फिल्म आई थी 1958 में। शक्ति सामंत साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका

निर्माण भी उन्होंने खुद किया था। इसमें मुख्य किरदार में थे अशोक कुमार साहब, मधुबाला, के एन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर, कम्मो, ब्रह्मा भारद्वाज, चमनपुरी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा हम सब के चहेते, हम सब के प्यारे कमर जलालाबादी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।

0: थाने में सीधा थाना प्रभारी के सामने जा पहुंचा। थाना प्रभारी का दिमाग इस वक्त एकदम भन्नाया हुआ था। थाना प्रभारी साहब ने सिपाही के साथ उस गवाह लड़के को आते देखा तो रंगदारी में एक दूसरे मामले का मुलजिम समझकर उसे पुलिस के रोल में पीटना शुरू कर दिया। सिपाही तरुण लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा और उसके 8-10 बार दोहराने के बाद थाना प्रभारी के भन्नाए दिमाग तक ये बात पहुंची कि ये तो दूसरे मामले में संभावित गवाह है, एसपी साहब को किसी भी तरह खुश करना होगा। पलक झपकते ही रोजनामचे में FIR दर्ज हो गई। अज्ञात महिला ने अज्ञात नवजात का अपहरण कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गवाह लड़के के साथ घटनास्थल का मुआयना करने लगी। गवाह लड़के ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस को भागते लड़के के पीछे दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे गवाह भाग गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वीडियो के सहारे पूछताछ करती घंटे भर में कुम्हारपुरा में कजली के घर तक जा पहुंची। मैंने तो उसकी जान बचाई है, मौके पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी तब, आप लोग आज पहुंचे, आज तक तो आवारा जानवर उसे हजम कर गए होते। अस्पताल में सब सच बताया था? बताओ। हाँ देखिए अस्पताल के कागज। नहीं नहीं मैंने उसे चुराया नहीं है। कहने से जीप में जाकर नहीं बैठी वो, पुलिस को मजबूरन उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ी। तीनों बिलखते बच्चों को भी जीप में पीछे धकेल दिया गया। कजली अपने आंसू पोंछती अपने दिल में अपनी मरहूम माँ से मुखातिब है। तुमने मुझे स्कूल कॉलेज जाने दिया होता तो आज मेरी ये गत ना होती। अब दरोगा जी के सर का दर्द कुछ हल्का हुआ। थाने पहुंचने तक वो लगातार फोन करते रहे अपने मित्र संवाददाताओं को। थाने पहुंचिए तत्काल, हमने 1 घंटे मात्र में अपहरण का एक केस हल कर लिया है। प्रेस वार्ता हो गई। प्रेस वार्ता में कैमरों के फ्लैश चमके। हवालात में बंद महिला और 3 बच्चों की ओर उंगली उठाकर थाना प्रभारी साहब बता रहे हैं, मुलजिम ने कहीं से इस नवजात बच्ची का अपहरण किया है। मुलजिम के पास ये बच्चे बरामद हुए हैं जिन्हें वो अपना बता रही है। प्रेस वार्ता निपटाकर थाना प्रभारी तुरंत SP साहब के ऑफिस के लिए निकल गए। रात के नशे और SP साहब की फटकार सहित सिर का भयानक दर्द भी अब सब गायब हो चुका था। हवालात में नवजात के लगातार रोने से दीवान साहब तंग आ गए हैं। अरे भाई कोई इस बच्ची को अस्पताल ले जाओ, गाड़ी नहीं है दीवान जी थाने में। क्यों कहां गई दोनों गाड़ियां? एक तो दारोगा जी SP ऑफिस में ले गए हैं और दूसरी वो दारोगा जी की जो बिटिया है ना उसको कोचिंग क्लास छोड़ने गई है। अच्छा तो कोचिंग क्लास से लौट कर तो आएगी ना अभी? नहीं वो फिर दारोगा जी की जो मिसेज है ना उनको बाजार ले जाएगी।
1: हैं?
0: तो क्या अपहृत बच्ची मुलजिम के पास ही रहेगी? और जवाब में होना ये था कि बदबूदार अंधेरी और दुर्गंध भरी हवालात की असहनीय गर्मी में अगले दिन तक माँ बच्चों को सड़ना था। लेकिन IG साहब के अचानक दौरे की खबर ने न सिर्फ थाने में सुव्यवस्था का हड़कंप मचा दिया बल्कि बंदियों का भी हड़बड़ी के साथ इंतजाम होने लगा। थाने की जीप बाजार जाती थाना प्रभारी की मेम साहब को आधे रास्ते में सड़क पर उतारकर थाने की तरफ वापस दौड़ी। दारोगा जी हक बकाए थाने में लौट आए और कजली को 3 बच्चों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने भेज दिया। क्या तुमने बच्ची को चुराया है? मजिस्ट्रेट मैडम ने सीधा ही प्रश्न कर दिया कजली से। धड़कते दिल को काबू करती बड़े हौसले और संयम से कजली ने विस्तार पूर्वक सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अस्पताल के कागज और जब्त वीडियो उसकी सच्चाई के सबूत थे। कजली को आरोप मुक्त करने और बच्ची को अनाथालय भेजने के फैसले के अंत में मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौहान ने पुलिस के लिए फिर वही सलाह लिखनी चाही, पर कानून की विदुषी ने अफसोस भरी सांस लेते हुए अपनी कलम रोक ली। मैडम जी ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मेरे सिवाय कोई इसे माँ की तरह नहीं पाल सकता, आंचल पसार कर अनुनय किया कजली ने। मैजिस्ट्रेट मैडम आधे पल को अवाक रह गई, फिर संभली, औपचारिक आवाज में उसे बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में बताया। कोर्ट के बाहर जाती कजली को दूर तक देखते उसके तरल हृदय में भीतर ही भीतर एक दुआ की, हे ईश्वर इस बच्ची को

ये माँ मिल जाए। अंधेरा ढलते कजली दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंची। दरवाजा खुला है। नशे में दुत पति भीतर से उसका नाम ले लेकर गालियां दे रहा है। मोहल्ले के दो एक निकम्मे उसके पास बैठे हैं, उसे शह दे रहे हैं। कजली का दिल एक बार मुकर गया। छोड़ दे ये घर और आदमी, दिन रात के कलह से प्राण तो छूटे। दहलीज पर खड़ी वो ये सब सोच ही रही है कि दोनों बच्चे भागकर घर के भीतर पहुंच गए। पति के मित्र चुपचाप निकल गए। वो भीतर आई और रात का खाना बनाने में जुट गई। अगली सुबह सब घरेलू काम पूरे कर अगरबत्ती बनाने बैठी तो रत्ती भर दिल नहीं लगा उसका काम में। उसके सीने की नसों में कसक भरी सरसराहट होती है। बच्ची दूध के लिए तरस रही होगी। मम्मी गंगा के अस्पताल में है? मम्मी उसे घर कब लाएंगे हम? क्या आपने बहन को अस्पताल वालों को दे दिया? बच्चों के सवालों ने काम करते हाथों को रोक दिया। कजली निकल पड़ी थाने की ओर। दीवान साहब चौंकते हैं, गसब जनी कल गिरफ्तार हुई थी आज फिर आ गई थाने। कजली हाथ जोड़कर अनाथालय का पता पूछती है। शहर से 4 किलोमीटर बाहर इस तरफ सड़क के बाहर टेम्पो 2-सीटर नहीं जाते हैं। मोड़ से ही कच्ची सड़क पर पैदल चलती रही कजली। दूर से ही वो अपनी नवजात के बिलखने का स्वर पहचान जाती है। पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं माँ के। कजली ने भागकर गंगा को पलने में से उठा लिया। बच्ची दूध पीते पीते सो गई। उसकी गीली लंगोटी और कथरी बदलकर वापस उसे पलने में लिटा दिया और कुछ देर यूं ही निहारती रही कजली, ओ मेरी बिटिया।

अब उसने चारों तरफ नजर डाली। बड़े कमरे में तीनों पल्लों में बच्चे लेटे हैं, जो शायद तीनों ही लड़कियां हैं। बाकी कमरे में खेलती, सोती या रोती एक से लेकर 5 साल तक की कुल 7 लड़कियां हैं। इसके अलावा उसमें 3 छोटे लड़के भी हैं, जिसमें से 2 दिव्यांग दिख रहे हैं। कजली इस बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर घूमकर किसी अधिकृत व्यक्ति को ढूंढने लगी कि जिससे बात की जा सके। अनाथालय की रसोई, बगीचे, बाथरूम, ऑफिस, सभी स्थलों पर 5 साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां काम करती दिख रही हैं। कोई 6 बरस की बच्ची बगीचे के पौधों को पानी देती, तो कोई 7 बरस की बालिका सब्जी काट रही थी। कजली को कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वो दफ्तर गई, जहां 5 साल की एक लड़की पोछा लगा रही थी। बिटिया, यहाँ बात किससे करनी है? ओ मैडम जी तो घर में सो रही हैं।

सामने ही उनका क्वार्टर है। 5 बरस की लड़की किसी पारंगत नौकरानी की तरह अपने काम में लगे लगे ही जवाब देती है। लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी जगह पोछा लगाए देती हूँ। खजली ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची इस अप्रत्याशित बात से सिखाया काम भूल गई। आंखें बड़ी कर उसे ताकती हुई बोली, मेरी अम्मा बहुत बुरी थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए फेंक दिया, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है और सब दुत्कारते हैं। नहीं बिटिया, अम्मा बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं कुछ लोग, कुछ रिवाज जो अम्मा से बच्चों को छीन लेते हैं। मैं मार डालूंगी उन सबको। वो बच्ची रोने लगी। तो पढ़ना, खूब खूब पढ़ना, तब जीत जाओगी गंदे लोगों से और गंदे रिवाजों से भी। हो सकता है तब तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी मिल जाए। कजली ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गई। इंचार्ज मैडम के कमरे के बाहर खिड़की पर लगा इतना बड़ा कूलर चल रहा है जिसकी इतनी ऊंची आवाज है या कि उसकी नींद इतनी गहरी है कि बड़े देर तक दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऑफिस में इंतजार करने का मन बनाकर वो लौटने को हुई ही थी कि पीछे दरवाजा खुल गया। कौन हो तुम और पालन गृह के अंदर कैसे घुस आई? जी, एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ। दरख्वास्त ले लीजिए। ऐसे दरख्वास्त हम नहीं लेते, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। जाओ जाओ, पहले ऑनलाइन फार्म भरो, बच्ची देखने फिर किसी दिन आना, कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद पालन गृह की बूढ़ी आया, हाथों में सब्जियों से भरे थैले लेकर आई। कजली ने दौड़कर मुख्य द्वार से ही उसके दोनों हाथों से दोनों थैले ले लिए और रसोई तक पहुंचा आई। ऑफिस में पंखे में सुस्ताते वृद्धा अब उसे एक राम कहानी सुना रही है। मैडम के अलावा यहाँ 3 लोग और थे, एक सहायक इंचार्ज, एक ऑफिस वाला और एक चपरासी। एक दिन 7-8 लड़कियां यहाँ से भाग निकली पीछे खेतों के रास्ते। उन लड़कियों की उम्र 10 से 15 के बीच में थी। वो सब पीछे के गांव पहुंची और गांव वालों से रो रोकर आप बीती सुनाने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुलाई। तब से पालन गृह के 2 कर्मचारी जेल में हैं, एक फरार है। मामले में मैडम का भी नाम आया था, लेकिन मैडम की पहुंच बहुत ऊंची है। वो बीमारी का आड़ लेकर तुरंत गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। मैडम को तो बस अपना सामान बटोरना है यहाँ से। सो भी वो मुझसे ही करवाएंगी। अरे वो ठहरी थायराइड की बीमार, 18-18 घंटे बेहोश की तरह सोया करती हैं। हे भगवान, ऐसी भयंकर बीमार मैडम पालन गृह कैसे चलाती हैं? पिछले 3 सालों से तो उनका छोटा भाई ही सब काम देखता था, जिसे मैडम ने यहाँ का सहायक इंचार्ज बनवा दिया था। मैडम के रिश्तेदार बड़े ऊंचे अफसर हैं, हाँ, इसीलिए उनका भाई यहाँ कांड करता था और उसकी शिकायत भी ना कर सकी बच्चियां। जब कभी भी निरीक्षण वाली टीम आती, लड़कियां जरूर अपनी बात कहती थीं, पर इस 4 दीवारी से बाहर उनकी आवाज जाने नहीं दी मैडम के भाई ने। 3 सालों तक यहाँ की बच्चियां यह जुल्म सहती रही और तुम देखती रही अम्मा, कुछ कहती तो मैडम नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती थी। मेरा बेटा निकम्मा है, 2 कौर रोटी के लिए मैंने अपना परलोक बिगाड़ लिया। वृद्धा अपनी चिमचिमाई पनीली आंखों को धोती के कोर से पोंछती है। अम्मा, मुझे बच्ची गोद लेनी है जो कल यहाँ आई है, दरखास्त कैसे लगती है? अरे भाई, वो तो अब कंप्यूटर के भीतर से लगती है। तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ, कंप्यूटर कर दुकान पे 50 रुपए दे देना, वो सब कागज पत्तर बनाकर कंप्यूटर में डाल देगा और तुम्हारे नाम की दरखास्त लग जाएगी। 50 रुपए? ओह, तो कल जाऊंगी बाजार। आने से पहले फिर कजली ने अपनी गंगा को दूध पिलाया, सीने से चिपटाया। नेह का कैसा नाता है जो आत्माओं की तार जोड़ता है। 2 अपरिचिताएं नहीं, माँ बेटी का एक जोड़ा है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद अगले 8 महीने तक कजली हर इतवार बच्चों के साथ गंगा से मिलने जाती रही। बच्चे हर स्कूली छुट्टी का अब अलग तरह से इंतजार करते। छोटी बहन से मिलने जाएंगे हम, कजली उल्टे फंदे सीधे फंदे के डिजाइन में जल्दी जल्दी स्वेटर बुन रही है। बच्चे दरी पर बैठे पढ़ रहे हैं, तभी कजली के सेल फोन की घंटी बजती है। अधिकृतों के समक्ष आवेदनों की सुनवाई हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ लिए कमेटी के सामने प्रस्तुत है। तुम्हारा पति नहीं आया साथ में? उसकी सहमति नहीं है क्या? पहले से ही तुम्हारे दो बच्चे हैं, फिर तुम्हें एक और बच्चा गोद लेने की जरूरत है ही क्यों? अगरबत्तियां बनाने बेचने का मामूली काम करती हो। अच्छा, तो इसमें दो बच्चों के साथ इस बच्ची को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना कपड़ा मुहैया करवा पाओगी, इसकी क्या गारंटी है भला? इन सब प्रश्नों का कजली ने एक ही उत्तर दिया है, मैं मां हूं गंगा की। कमेटी के समक्ष पूरी कहानी है। गंगा के चींटों भरे शॉल से लेकर बुने जा रहे नर्म स्वेटर तक। और कमेटी ने निर्णय सुनाया है। ऑटो में जब कजली तीनों बच्चों के साथ घर के बाहर उतरी तो कुम्हारपुरा में रौनक लग गई। सब नन्नी बच्ची को देखने उमड़ पड़े हैं। कैलाश छोटी गदबद बहन को गोद में उठाकर घुमाने की कोशिश कर रहा है। सोन ने पूछा, मम्मी गंगा बड़ी होकर क्या बनेगी?

रसोई करती कजली के हाथ कुछ पल को रुक गए। सोन के प्रश्न की प्रतिध्वनियां उसके भीतर लगातार गूंज रही थी। उसने जैसे खुद से एक वादा किया, मैं अपनी माँ को नहीं दोहराऊंगी, और सधे शब्दों में कहा, जो बनना चाहेगी वो बनेगी। भयानक तपती रसोई में जैसे अनायास ही एक ठंडक खुल गई थी। कजली के रुके हाथ फिर से चल पड़े थे और सोन उसका चेहरा दमक उठा।

अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम था कजली। इसे आपके लिए लिखा था इंदिरा दांगी ने। पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि

0: नियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, VCK and the Indian Union Muslim League, that is IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary Organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chenithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर संग हूं मैं श्रेयसी, और शुरुआत करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम इस नगमे के साथ।

आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में फागुन फिल्म का ये बेहतरीन गीत दोस्तों आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, जहां हम पुराने और बेहद ही बेहतरीन गीत आपके साथ साझा करते हैं, हम और आप साथ में मिलकर सुनते हैं और उसे यूं ही एंजॉय करते हैं। तो आइए अब रुख करते हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म 9 to 11 का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में।

0: गणपति हल चल।
1: दोस्तों, जब हम रेडियो पर जुड़ते हैं तो बेहतरीन नगमों के लिए जुड़ते हैं, और क्यों ना हो, आखिर कुछ ऐसे हमारे जज्बात हैं, ऐसे हमारे हालात हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत पड़ती है, और वो सारे शब्द हमें मिलते हैं हमारे हिंदी बॉलीवुड गीतों से। जी हाँ, बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गाने और हमारे दिल का हाल। तो आइए अब बढ़ चलें अगले गीत पर।

दिल का तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, जब कोई बड़ी बड़ी आँखियाँ दिखाएं तो बस दिल तो चूहा बन के कहीं दुबक ही जाता है। खैर, इस तरह की नोक झोंक अटकेलियाँ तो हर तरह के रिश्तों में लगी रहती है, लेकिन जब दिल का मामला होता है तो इन अटकेलियों का एक अलग ही रस होता है। अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से लिया हमने आवाजें गीता दत्त और रफी साहब की। बढ़ते हैं अब अगले गीत की तरफ। गीता दत्त की ही आवाज में अगला ये नगमा फिल्म भाई भाई से।

क्यों दोस्तों, ये कहना कहीं से भी गलत तो नहीं कि हमारे दिल के जज्बात, हमारे होठों पे जो ना आई हो बात, वो सारा कुछ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस बॉलीवुड गीतों के जरिए हम किसी को भी बयां कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, रोशनी का इंतजार करते

0: करते अंधेरे से मोहब्बत हो जाती है, रोशनी का इंतज़ार करते करते अंधेरे से मोहब्बत हो जाती है। बस ये हाल ही कुछ ऐसा है कि उसका इंतज़ार करते करते खुद से ही मोहब्बत हो जाती है।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

आ फिल्म से ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की थी। अगला जो गीत आपके सामने पेश कर रही हूँ लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में है फिल्म श्री 420 का। आइए सुनते हैं ये नगमा।

मधुमती फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, बोल सजाए सलील चौधरी के, बोल सजाए शैलेंद्र के, और म्यूजिक दिया सलील चौधरी ने। दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी, और हम खास कुछ ऐसे पुराने क्लासिकल गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो हमेशा हमेशा सुहाने रहते हैं, हमारे दिलों में तरोताज़ा रहते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ। फिल्म नया दौर का ये झूमता हुआ गाना रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में, जिसके बोल सजाए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। आइए सुने ये नगमा और झूम जाएं इसके साथ।

और यूं ही दोस्तों किस तरह हमारे गीतों का सिलसिला चलता रहता है, हमारा साथ यूं ही बना रहता है और एक से एक बेहतरीन गीतें, एक से एक बेहतरीन गाने हमारे दिलो दिमाग में बस यूं ही झूमते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस अगले गीत की तरफ। फिल्म पेइंग गेस्ट का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक SD बर्मन साहब का।

पेइंग गेस्ट के इस बेहतरीन गीत के बाद दोस्तों अब एक और प्यारा सा नगमा मेरे जहन में आ रहा है फिल्म काला पानी का। आशा भोसले और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, लेकिन हाँ साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि कार्यक्रम गीत सुहाने अब इस गीत के बाद ही चल जाएगा विराम पर, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा FM गोल्ड चैनल पर, क्योंकि इसके बाद अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और समाचारों के पार अगला कार्यक्रम लेकर मैं श्रेयसी आपसे फिर जुड़ जाऊंगी। तो चलते चलते ये एक नगमा आपकी नजर।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम

पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता संघ समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 और सेकेंड्स की सुइयां बढ़ती चल रही हैं और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। संघू में श्रेयसी और आइए इस रात की चांदनी बिखेरें और गीतों की श्रृंखला बढ़ाते चलें। शुरुआत करते हैं इस गीत से, फिल्म आनंद से लिया ये नगमा हमने मुकेश की आवाज में।

आनंद फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, ये गीत ही कुछ ऐसा है, ये फिल्म ही कुछ ऐसी थी जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कुराहटों में छुपाने की दर्द या जज्बात को बयां करती थी। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो देखा वहां कतारें बहुत हैं।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना दोस्तों। म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं अनजान के। अगला नगमा जो आपके सामने पेश कर रही हूँ फिल्म गोलमाल का है, किशोर कुमार की ही आवाज़ हैं और बोल सजाए हैं गुलजार ने। आइए सुनते हैं ये नगमा।

कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं।

मुकेश और कंचन की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का ये नगमा आपने सुना, बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म कभी कभी का वो बेहतरीन नगमा जो हर किसी की जबान पे हमेशा रहता है। जी हाँ, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल हैं खयाम साहब के।

अनामिका फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल सजाए मजरूह सुल्तान पुरी ने और संगीत दिया आर डी बर्मन साहब ने। आर डी बर्मन साहब का ही एक और सजाया संगीत फिल्म कटी पतंग से ये नगमा आपके साथ साझा कर रही हूँ। बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और आवाज़ है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा।

फिल्म द ग्रेट गैम्बल से आशा भोसले की आवाज में ये बेहतरीन नगमा आपने सुना। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो पेश कर रही हूं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूँ मैं श्रेयसी। एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वक्त रहते कदर कर लें अपनी हर उस एहसास का, बाद में होने वाले को पछतावा ना झेलना पड़े। तो इसलिए गीतों का सिलसिला जारी रहे, शब्दों भी अगर आपको ना मिले तो

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

बशीर बद्र साहब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो फिर ऐसे ही जज्बात उभर कर सामने आते हैं। और प्यार और मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी कोई न कोई ऐसा शख्स ज़रूर आता है जो आपको सचमुच पागल सा बना देता है, पागल सा कर देता है, और यही मोहब्बत की पहली निशानी होती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:12 और 5 सेकंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात के इस वक्त में आप किसी सफ़र पे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई में मशगूल हैं, इन सब के बावजूद संगीत, म्यूज़िक, मौसीकी एक ऐसा साथी होता है जो हर वक्त आपको सुकून पहुंचाता है और उस दुनिया में लेकर जाता है जहां पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जब तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं तो फिर आप प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज। और ये सफ़र बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं। ज़िंदगी हम तमाम लोगों की बिल्कुल एक जैसी है। किसी की ज़िंदगी में हमें लगता है कि बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां भी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी इन तमाम मरहलों से गुज़र कर आगे बढ़ती है। कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात, कुछ आसानियां और कुछ खुशियां। इन तमाम चीज़ों से मिलकर ही ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और जब तक ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हों, तो फिर ज़िंदगी की खुशियों का और ज़िंदगी की तकलीफ़ों का हमें अनुभव ही ना होगा। ऐसे ही ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हम सब मिलकर ज़िंदगी को इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुछ पाने की ललक, कुछ हासिल करने की तमन्ना, और उन तमन्नाओं में एक हम सफ़र की बात, प्यार मोहब्बत। जब तक हमारी ज़िंदगी में प्यार ना हो, तो ये ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आपने ये नगमा सुना था। और अगला नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए।

लता जी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म आ गले लग जा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। गीतों के, नगमों के, ये वो नगमे हैं जो हमेशा हम सब सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं और ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं हमराही की इस महफिल में, और हमराही में उन नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, वो युगल गीत जो सदाबहार रहें और हमेशा हमारे दिल में बस गए। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। हमराही में अब अगला नगमा एक और बेहद खूबसूरत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें हैं लता जी और हम सब के चहेते मुकेश साहब की।

मैं न भूलूंगा, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से आवाजें थी लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, हमराही की वो महफिल जो आपका हम सफर बनकर आपके साथ चलता है, आपका हमराही बनकर आपका हमराह बनता है, यानी आपके सफर को आसान बना देता है। अगर आप भी इस वक्त किसी सफर पे हैं, कहीं जा रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो आपको चाहता है, या आप उसे चाहते हैं, या आप उन सब उनके दिल के करीब हैं, तो बस उन्हें याद कीजिए और इन नगमों को सुनिए, फिर देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुकून आपको मिलेगा। ये नगमे हमेशा हमारे दिल की गहराई में उतर जाते हैं और हमें ले जाते हैं किसी और दुनिया में, शायद उसे ख्यालों की दुनिया भी कह सकते हैं, या अपने गुजरे वक्त को भी आप याद कर सकते हैं, और याद करके आप उसी दौर में वापस जा सकते हैं जब वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन था और आपका महबूब आपके साथ था। लेकिन

अब जब वो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो आप उसे किस तरीके से याद कर रहे हैं, यही बताता है अगला यह नगमा। फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस दिलकश महफिल में करवटें बदलते रहे सारी रात हम।

हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। फिल्म अगर तुम न होते से नगमा तालता जी की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब याद किसी की आती है और जब किसी की याद में आप मुब्तला होते हैं तो फिर ऐसे अल्फाज आपकी जबान से निकलना लाजमी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। और ये यादें हमेशा के लिए हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसी होती है, क्योंकि ये वो यादें होती हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब होती हैं। और ऐसे ही यादों के साथ हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, रुकते नहीं हैं, बस बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल हमराही के इस सफर की तरह। और हमराही में अगला नगमा कुछ ऐसा ही, संगम फिल्म से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। संगम फिल्म का ये नगमा मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। तो ये सफ़र कैसा लग रहा है, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आपको हमें मेल करना होगा और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी ज़रूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। हमें आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म आंधी से, लता जी की और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आपके लिए ये नगमा खास तौर से।

आंधी फिल्म का यह नगमा था, आवाज़ें थी लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की। इसी के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए इजाज़त हमराही से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूँगा आपके साथ लेकर आपका अपना प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 8 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और आज के इस नई सुबह में आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल है। कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। जब कोई आपका अपना आपके साथ हो तो आपके दिल में बहुत सारी उमंगें जमा होती रहती है, बहुत सारी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हिचकोले लिए घूमती रहती है, बहुत सारी बातें आपके दिल में फूलों की तरह खिलती रहती हैं और जब ऐसा होता है तो समझें कि आपका अपना आपके दिल के कितने करीब है और जब आपका अपना कोई आपका साथ दे रहा हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो तो यकीन मानिए दिल की उमंगें तो जवां होंगी ही होंगी और फिर ज़िंदगी भी बेहद खूबसूरत होगी। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। आवाज़ है हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की फिल्म मुनीम जी से।

दिल की उमंगे हैं जवां, बेहद खूबसूरत है नगमा। मुनीम जी फिल्म से हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, यकीनन ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला थोड़ा मजाहिया टाइप का ये नगमा यकीनन कहीं ना कहीं हमारे दिल में जो खामोशियां हैं, हमारे दिल में जो कुछ गुबार है, हमारे दिल में जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, उसको दूर करता हुआ ये नगमा दिल की उमंगे हैं जवां बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरती

के साथ गाया भी गया है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल है अरुणिमा की, और अरुणिमा में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, और नगमा है फिल्म प्यासा सावन से। लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज में तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, यानी अगर जब आपके साथ कोई आपका अपना हो तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। अगर आप कहीं गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं तो वो थाम लेगा, और अगर वो कहीं पे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं या राह भटकते हैं तो आप उसे थाम लेंगे। ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है, और ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है जब आपका अपना कोई हम सफ़र हो, तब पता चलती है ये बात। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही प्यारे नगमे के साथ।

तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। फिल्म प्यासा सावन का यह नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और महफिल सजी है आपकी अपनी अरुणिमा की। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात आए तो मायूस बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है और वो रोशनी आपको एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाती है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से डटकर जो मुकाबला करके आगे बढ़ेगा वही जिंदगी में सच्चा कामयाब योद्धा होगा। और कहते हैं कि दो लफ्ज़ों की है ये दिल की कहानी, मोहब्बत और मुस्कुराहट से भरी ये जिंदगानी। मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ अगर आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदमों में होती है। इसी नगमे के साथ, ऐसे ही नगमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:34:50। महफिल है अरुणिमा की और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो चलिए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी के सफ़र के साथ साथ इस सफ़र को भी यूं ही आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, फिल्म सपनों का सौदागर से आवाज़।

तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के सफर में बन जाए उजाला। ये नगमा था सपनों का सौदागर फिल्म से, आवाजें मुकेश साहब और शारदा की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की यह महफिल। जावेद नसीमी कहते हैं कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तस्वीर है जो तन्हा नहीं होने देता। यकीनन कोई एक चेहरा ऐसा होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपकी आंखों में बसा होता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, और वो अगर साथ आपके चलता है तो फिर ये सफर भी बहुत ही आसान हो जाता है। और जब वो सफ़र आसान होता है तो वो और ज़्यादा करीब आपके होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्कुल आपके अपने दिल में उतर जाता है, और वो कोई और नहीं होता, वो होता है जो आपको जानता है, आपको समझता है, आपके जज्बात की कदर करता है। वही वो शख्स होता है जो आपके दिल में उतर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आप समझे कि आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत और कामयाब है। अगला नगमा कुछ ऐसा ही है, फिल्म वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बहुत ही प्यारी महफिल में।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का है नगमा, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। ये वो महफिल है जिसमें आप जिंदगी की बातें करते हैं, जिंदगी की बातें सुनते हैं और जिंदगी को खूबसूरती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ाई जाए उसके बारे में बातें करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारा ये सफ़र कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके लिए आपको हमारे ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपना फीडबैक इस पर भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम के जरिए हमसे जुड़े और हम आपके लिए जो बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं, जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम नगमे हम आपके खिदमत में यूं ही पेश करते रहेंगे। अगला नगमा हमराज फिल्म का तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में ये नगमा आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। और अगर कोई है जिसका आप साथ देना चाहते हैं और कोई है जिसका आप साथ चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये नगमा आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।

तुम अगर साथ देने का वादा करो। हमराज फिल्म का यह नगमा महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। इस नगमे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपका हमरा ही आपका हम कदम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और कुछ पल जिंदगी में सुकून के भी चाहिए होते हैं। अगर वो सुकून आपके ज़िंदगी में है तो फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल इस बेहद खूबसूरत कलाम की तरफ। और ये गज़ल है फिल्म मौसम से, लता जी और भूपेंद्र साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये नज़्म बेहद प्यारी बेहद खूबसूरत, ज़रूर पसंद आएगी आपको।

0: लता जी और भूपेंद्र सिंह की नई आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त अरुणिमा से, लेकिन सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूँगा आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रूपये की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के कई प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी बातें भी होती है, और ये भी कि हम जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात से कैसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और अपनी मंजिल को तय करें। लेकिन हर सुबह जब हम जगते हैं, हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और खुदा के नाम के साथ ही, ईश्वर के नाम के साथ ही हम हर नए दिन का आगाज करते हैं। तो हम भी आज उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, तो आइए आज की सुबह का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आइए आज के इस सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते हैं, उस खुदा का नाम लेते हुए, उस ईश्वर का नाम लेते हुए जिसने हमें पैदा किया और हमें एक बेहतर इंसान बनाया। ये नगमा है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, आवाज़ है सुषमा श्रेष्ठ की।

जी हाँ, तेरी है जमीन, तेरा आसमां, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ, ये जान, ये जिस्म और ये सेहत, ये तमाम चीज़ें तुम्हारी दी हुई है, यानी उस खुदा, उस ईश्वर की दी हुई है। वो चाहे तो हमें इससे भी बेहतर कर सकता है, वो चाहे तो हमें इससे भी बुरे हालात में रख सकता है, लेकिन हर हालात में वो हमारे लिए बेहतर सोचता है। वो सर्वश्रेष्ठ है और इंसान को भी ऐसा ही बनाया है। और इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितने भी जीव जंतु है, उसमें सबसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया गया है। और तमाम चीज़ों पर, तमाम कुदरती चीज़ों पर एक इंसान ही है जो अपनी हुकूमत करता है। और इंसान बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। अगर सही दिशा में चले, सही रास्ते पर चले, तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। और वही इंसान जब कोई गलत रास्ता इख्तियार कर ले, तो सबके लिए, पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश, पूरे वतन, पूरे मुल्क के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छी ज़िंदगी बनाए औरों को साथ लेकर आगे बढ़े। और कहते हैं कि हर नया दिन, हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई रोशनी के साथ आता है और ज़िंदगी में नए ख्वाब सजाने के लिए आता है। इसलिए हम भी कोशिश करें कि हर नए दिन में

एक नई सुबह में एक नई सोच के साथ नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें और अपने कदम को आगे बढ़ाएं और हर सुबह को एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करें इस नगमे की तरह। फिल्म याश का ये नगमा और आवाज़ है इस उदास की।

जी हाँ, ये सुबह सुहानी ज़रूर है, बेहद खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी भी है, क्योंकि हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आती है, एक नई उम्मीद के साथ आती है। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर नया दिन आगे बढ़ने और नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका देता है, और इसीलिए हम हर नए दिन को एक नए अवसर के तौर पर लें, ताकि हमारी ज़िंदगी रुके नहीं, थमे नहीं और बस आगे बढ़ती जाए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम रुक गए तो ज़िंदगी वहीं थम सी जाती है। तो आप भी अगर जग गए हैं तो जल्दी से बाहर निकलें और देखें कि मौसम कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है, और साथ ही साथ इस नई सुबह में चिड़ियों का चहचहाना भी आपने सुन लिया, और बहुत ही खूबसूरत इस सुबह में हम अपने कदम को बढ़ाना भी शुरू कर चुके हैं। आपने भी अगर अभी तक अपने बिस्तर छोड़े नहीं है तो जल्दी से उठिए और बाहर निकलिए, देखिए कितना सुहाना है ये दिन। और कहते हैं कि हर नया दिन हमें ये नया पैगाम इस तरीके से लेके आता है कि हमारे लिए आज का दिन एक कुछ नया करने का दिन है, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का दिन है, और ये प्रण लेने का दिन है कि हम आज एक नया काम ये करेंगे कि किसी हंसते को, किसी रोते को देखकर हम किसी रोते को देखकर उसको हंसाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से मदद करके, चाहे मामूली सी ही क्यों ना हो, बस वो छोटी सी मदद ही उसकी ज़िंदगी संवार सकती है, उसकी ज़िंदगी बना सकती है। इसी तरीके से जीवन चलता है और चलता ही रहेगा, और आप भी हम भी यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि जीवन को खुशियों के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि जीवन चलने का नाम है।